0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनाधिकृत

ने दो तेंदुए की खाल, 180 जीवित भारतीय तारा कछुए, 12 जीवित टोके गेको, लगभग 24 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क और लगभग 500 ग्राम बाघ की हड्डियां बरामद की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। अमेरिका ओपन में अमेरिका की बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरिना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्य जीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships.

0: पॉसिबिलिटीज बिकम प्रोग्रेस।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
2: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
1: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा $4 trillion से बढ़ाकर $30 trillion करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्य बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमरीका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
3: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। एक रिपोर्ट।
4: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने DNA किट, अभिक्रमक और DNA प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत

0: नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ मिलकर चिलिमे और लोंगटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और दो से तीन दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में आठवीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दाव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधे उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है। वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस ये सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष। मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मानसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Union Cabinet approves Railway's 8 multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi says Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8th aid flight specialized tunnel team and forensic experts. IAEA refers Iran to UN Security Council over nuclear non-compliance. IMD issues red alert for heavy rainfall.

0: मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने। ऐसी मीठी सी बात अगर हमें कोई सुबह सुबह बता दे, बोल दे, तो अपनी जो सुनहरी सुबह है, मॉर्निंग है, वो कितनी अच्छी जाती है, है ना। नमस्कार, आदाब, सुप्रभात। मस्त मुंबई कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी होस्टिंग दोस्त आरजे अवनी भट्ट, आप सभी का स्वागत करती हूँ। और 8:45 होने को है, बहुत सारे गाने सुनने हैं, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम बातें करेंगे। सो जुड़े रहिए मेरे साथ, यानी कि आरजे अवनी भट्ट के साथ, ओनली ऑन FM रेनबो।
1: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर, और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
2: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
1: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध, कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि,
2: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
3: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

वैसे आज का जो मौसम है वो वाकई में बहुत अच्छा है। सुबह सुबह बारिश भी हुई थी, मुंबई में तो हुई थी, आपके उधर हुई है कि नहीं? और नहीं हुई है तो ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि हमें पॉजिटिव सोचना है। और जो सोचेंगे, मतलब कहते हैं ना, जो मन में होता है वही दिखता है। ऐसा कहीं डायलॉग आपने सुना है, जो मन में होता है वही आपको दिखता है? एक बहुत अच्छी अभी फिल्म चल रही है जो जिनके डायलॉग्स भी इतने अच्छे हैं और गूज़बम्प्स होते हैं वो फिल्म देख के। कौन सी फिल्म के बारे में मैं बोल रही हूँ वो तो आपको पता ही चल गया होगा, लेकिन एक पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा फील होता है। और फिल्म ख़त्म होने के बाद भी आपको लगता है अरे मैं यहाँ पर ही बैठी रहूँ, देखती रहूँ, ऐसा लगता है नहीं कि फिल्म ख़त्म हो गई, पूरी हो गई। तो हनुमान अंश करके अभी जो फिल्म आई है बहुत ही अच्छी चल रही है और पॉजिटिव वाइब्स इस फिल्म में बहुत है। मतलब आपको फिल्म कब ख़त्म हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो उसका ही एक डायलॉग था, वो मुझे अभी याद आया कि जो मन में होता है वही दिखता है। वो बात तो सही है, तो मन में हम पॉजिटिव ही सोचेंगे ताकि हमें वो ही चीज़ें दिखे। अब हमारे साथ हमारे जो लिसनर्स है वो सब जुड़े हुए हैं, जैसे कि विजेंद्र घाटोल जी है, फिरोज सिगनपुरिया जी है, हजारीबाग से मैं नाम, एक मिनट, अपने ही लिसनर हैं रंजन जी हजारीबाग से, और महेश भोरा है, शुभदा जी है, कल्पना जी है उल्लासनगर से, और बहुत सारे लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद काखानीस जी है, विश्वास चांदोरकर है, प्रदीप अनंत कृष्णन जी है, और विश्वास विश्वनाथ छत्रे जी है। आप सभी का ढेर सारा प्यार हमें मिल रहा है, चाय भी मिल रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। चेतन कुमार जी है, थैंक यू सो मच आप सभी को, गुड मॉर्निंग। हम आपको रिप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि इतने सारे मैसेजेस हैं, बट आप सभी को गुड मॉर्निंग कहना चाहूँगी। कहते हैं कि एक श्लोक मुझे याद आया था जो मैं आपको बताना चाहूँगी। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। इसका मतलब क्या है? वृक्ष स्वयं जो है वो धूप सह कर भी दूसरे को छाया देते हैं, पेड़ के फल भी सत्पुरुष की तरह परोपकार के लिए होते हैं, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। आपने कभी सोचा कि जो आम का पेड़ है उसने कुछ आम अपने लिए रख लिए कि भाई मुझे भी चाहिए, या तो कोई भी फ्रूट हो या कोई भी सब्जी हो, उनने अपने लिए नहीं रखा, कुछ हमको ही दिया है, तो हमें उससे क्या सीखना है? नदियाँ भी परोपकार के लिए ही बहती है और गाय भी परोपकार के लिए ही दूध देती है। वो हमेशा अपने टाइम पे, मैं देखती हूँ 8 बजने को है, 7 बजने को वो अपने जो उनको लेके जाते हैं उनके साथ रहती है, सुबह सुबह निकल पड़ती है उनके काम के लिए। अर्थात ये शरीर जो है वो भी परोपकार के लिए ही है। एक हम ही है मनुष्य ऐसे कि बहुत सारी चीज़ें खुद के लिए रखते हैं और फिर सोचते हैं कि अच्छा किसी को देना चाहिए, दान देना चाहिए। ऐसा नहीं है, मतलब दूसरों की सेवा कीजिए, हम भी करेंगे, और दूसरों को खाना खिलाना वो भी बहुत ही आज के टाइम में जो जिनको ज़रूरत है वो करना ही चाहिए। बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन हमें काम भी करना है, और आज कुछ खास डे है उसके लिए मैं एक गाना सुनवाने जा रही हूँ, लेकिन बाद में मैं बात करती हूँ। सो जुड़े रहिए मेरे साथ यानी कि आरजे अवनी के साथ, ओनली ऑन FM रेनबो।

जब भी मिलते हैं तो योगा के बारे में बात करते ही है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज की तारीख है 10 सितंबर और आज का दिन हमें एक बेहद ज़रूरी बात जो है वो याद दिलाता है। आज मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उम्मीद और मदद का जो रास्ता है वो हमेशा मौजूद रहता है। ऐसा कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि कोई आपके नज़दीकी फ्रेंड्स हो और कुछ समय तक आपको पता ही ना चला हो कि उनको क्या तकलीफ थी या तो है, फिर आपको नहीं लगता कि अरे मुझे पहले पता होता तो मैं थोड़ा सा तो मुझे बताया होता, मैं एक बार बात कर लेता या तो बात कर लेती। कई बार हमारे आसपास कोई व्यक्ति अंदर ही अंदर किसी परेशानी से जूझ रहा होता है लेकिन हमें इसका पता ही नहीं चलता, और ऐसे में हमारी एक छोटी सी बातचीत, एक फ़ोन कॉल या सिर्फ इतना पूछ लेना कि भाई तुम ठीक हो ना, है ना, आपके फ्रेंड बीमार हो तो एक दिन के बाद, दो दिन के बाद एक बार पूछ लो कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक हो ना, दवाई ले कि नहीं, है ना, ये पूछना चाहिए। ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं वो बहुत ही मायने रखती हैं। आ जाइए एक दूसरे को थोड़ा और समझे, बिना जज किए किसी की बात सुने और ज़रूरत पड़ने पर मदद करने के लिए भी आगे बढ़े। ऐसा होता है कई बार हमें लगता है अरे ये तो कुछ बोलती ही नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है। और ऐसा नहीं है, हाँ एक चीज़ कि किसी को प्रॉब्लम है कुछ तो हमें उसको उस समय एडवाइस देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे पूछना चाहिए, फिर बोलते हैं कि हाँ चल बाहर चलते हैं, बैठते हैं, गाने सुनते हैं। लेकिन कई लोगों को आदत ये भी होती है कि आपको ये करना चाहिए, आपने ये नहीं बोला, तो वो भी ठीक नहीं है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा और आपको भी ऐसे कोई लोग जो आपके फ्रेंड्स हैं वो याद आते हैं तो उनको फ़ोन ज़रूर कीजिए आज ही के दिन, है ना। और भी बातें करेंगे लेकिन इसी बात पे मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा जो गाना है वो सुनवाने जा रही हूँ फिर निर्जा से।

0: जीते हैं चल, और हमें अपने फ्रेंड्स हो या घर में कोई भी हो, हमारे सिस्टर हो, भाई हो, फैमिली में जो भी हो, उनके साथ भी ऐसे बैठना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे फिर बाहर बताते हैं, है ना, क्योंकि घर में उनको सुनने वाला होता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ही बातें होती रहती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी अविनाश जी ने भी एक बात बताई है कि मेरा एक दोस्त था जो इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट में फेल हुआ था। ऐसा होता है इंजीनियरिंग में, मतलब स्टार्टिंग के जो ईयर होते हैं तो उसमें, स्टार्टिंग के ईयर नहीं बट फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में ये प्रॉब्लम होता है, फिर समझ में आ जाता है धीरे धीरे, लेकिन ये चीज़ें होती है। तो उन्होंने कहा कि उसको बहुत बार पूछने पे भी जताया कि उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल करके, मतलब उन्होंने मेरी फीस पे की है, सब्जेक्ट निकल नहीं रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि आप मेरिट में अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो हमारे पास दो ही ऑप्शन रहते थे और अभी भी है कि इंजीनियरिंग करेंगे या तो मेडिसिन में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो पसंद है उसमें आप बहुत ही बेहतरीन काम कर सकते हो और बहुत ही आगे बढ़ सकते हो, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, मैंने भी देखे हैं। खैर, और उसमें भी ऐसा होता है इंजीनियरिंग में कि जो स्ट्रीम होती है उसमें, मतलब कौन सी ब्रांच सबसे आगे चल रही है, जैसे कि मेरे टाइम पे केमिकल अच्छी चल रही थी तो पहले बच्चे केमिकल में ही जाएंगे फिर मैकेनिकल में जाएंगे, उनको पता नहीं है कि मुझे किस में इंटरेस्ट है। तो वो भी आपको सोचना चाहिए। और अगर आपको ऊपर से प्रेशर है फैमिली से कि नहीं नहीं तुझे ये करना चाहिए, तो उनके साथ भी बहुत ही अच्छे से बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है आजकल जो पेरेंट्स हैं वो अच्छे से समझ रहे हैं, पहले भी समझ रहे थे, लेकिन अच्छे से बात करके इस, क्या बोलते हैं, उलझन को हम सुलझा सकते हैं। और अविनाश जी बता रहे कि ये 2008 की बात है और अच्छे से उनको समझाया हम फ्रेंड्स ने क्या और कैसे पढ़ाई करनी है और कुछ हेल्प चाहिए तो बता। अब फ्रेंड अच्छी कंपनी में जॉब पे है, वेरी नाइस। मतलब ऐसा ही होना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं या तो फ्रेंड्स को पता ही नहीं है कि मेरे फ्रेंड को क्या प्रॉब्लम है, तो वो भी देखिए कि भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है। और भी बातें करेंगे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
1: आपकी प्रॉपर्टी आएगी आप ही के काम। रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर लोन उपलब्ध,
2: प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन, टर्म लोन और कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: इंटरेस्ट रेट 9.25% से शुरू, महिलाओं के लिए ब्याज दर में छूट, शर्तें लागू।
2: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz, म्यूजिकली योर्स।
0: कई बार हमें छोटे बच्चे पूछते हैं कि अरे ये जो एक दिन अच्छा जाता है तो दो दिन कुछ उलझन में, प्रॉब्लम्स में जाते हैं। तो फिर हम बताते हैं कि अगर हम अच्छे, हमने अच्छे कर्म किए होते, ऐसे ही बात करते हैं, तो फिर हम आते ही नहीं थे, हमें भगवत प्राप्ति हो गई होती। लेकिन कुछ तो है अपना जो हम भुगत रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोल रही। अच्छा काम करते हैं तो अच्छी चीज़ें आती है और कुछ मेहनत कम पड़ती है तो वहाँ पे हम वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो ऐसा होता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन याद रखिए कि मुश्किल वक्त गुजर जाता है, है ना। सिक्के की दो पहलू होती है, तो मुश्किल वक्त गुजर जाता है लेकिन ज़िंदगी जो है वो बहुत ही अनमोल है। और इसी खूबसूरत सोच के साथ आज की एक, मतलब ये प्रोग्राम का मैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनाने जा रही हूँ और अपनी आज की सुबह भी सकारात्मकता, एक उम्मीद और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आपको शुरू करनी चाहिए। वैसे तो 9:20 होने को है लेकिन एक प्यारी मुस्कान आप जहाँ पे हो वहाँ पे दे दीजिए। मैं स्टूडियो से दे रही हूँ और ये गाना सुनते हैं हम KK और सलीम मर्चेंट की आवाज़ में। जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि RJ अवनी भट्ट के साथ, ओनली ऑन FM रेनबो।

वैसे आशाएं हमें छोड़नी नहीं है, मन में कुछ आशा रखेंगे तो फिर हम एक गोल सेट करेंगे, फिर कुछ काम करेंगे। और हमेशा हम बात करते हैं कि जब हम पहले तो एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है तो फिर हमें कुछ थॉट्स आते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, नहीं तो नहीं है स्वस्थ तो फिर आगे कुछ करने का मन नहीं होता। बीमार पड़ते हैं वो बात अलग है, लेकिन रोज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए हम क्या करते हैं, योगा करते हैं। लेकिन एक बात और बता दूँ कि अगर कोई डिप्रेशन में है और आप सीधा उनको बोलोगे अरे ये आसन कर ले, 12 सूर्य नमस्कार कर ले, तो वो आपको घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उनको हमें एक्सरसाइज की बात नहीं करनी है। पहले उनका क्या प्रॉब्लम है सुनना है, सिर्फ बोलना नहीं है। योग जो है वो हमें अपने मन और शरीर के साथ कुछ पल जुड़ने का अवसर देता है, क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ओम का उच्चारण या करेंगे और मेडिटेशन में बैठ गए और आप सीधा मतलब उसके साथ कनेक्ट हो गए। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप जब बैठेंगे तो आपको कई सारे ख्याल आएंगे, आगे पीछे के, इधर उधर के, तो आपको सिर्फ 5 मिनट गहरी और सहज सांसों से बैठना है और ज़्यादातर फोकस करने की ट्राई करनी है। आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांस अंदर ले और आराम से बाहर छोड़ें। वैसे तो हम एक्सरसाइज योगा के बारे में बात करते ही हैं, जैसे कि 12 सूर्य नमस्कार कर लिए तो उसमें सब आसन आ जाते हैं, लेकिन अपने ध्यान को जब हम ध्यान में बैठते हैं, और कुछ लोग तो पद्मासन में भी बैठते हैं, अगर आप ऐसे बैठ के फिर प्राणायाम भी कर पाए तो वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन याद रखिए कि योग जो है वो मददगार हो सकता है, पर जब मन बहुत परेशान होता है या जिंदगी बोझिल महसूस हो रही है तो अकेले ना रहें, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, और ज़रूरत पड़ने पर मानसिक मतलब कहते हैं ना साइकेट्रिस्ट को भी अगर बताना पड़े तो आप बता सकते हैं। आजकल और पहले तो था ही नहीं, आजकल ये भी प्रॉब्लम है कि आपको अगर कोई बोले कि डॉक्टर को दिखा के आए तो काफ़ी लोग ना बोलते कि अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर किसी के साथ होता है। जो आपको बाहर से सक्सेसफुल लगता है, या तो आप सोशल मीडिया पे तो सब अच्छे ही फोटोज़ रखेंगे ना, ऐसा थोड़ी रखेंगे कि लिखेंगे मैं प्रॉब्लम में हूँ, ऐसा नहीं है। बाहर जो आप दिखते हैं वो आपको अच्छी बातें ही नज़र आती हैं। तो देखिए, आप सोशल मीडिया का भी यूज़ कीजिए, लेकिन उसके सहारे मत जाइए कि अरे इसको तो कितना अच्छा है, मुझे ही प्रॉब्लम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी की लाइफ में अप डाउन्स आते रहते हैं, तो इसी सोच के साथ चलिए। और जो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो कुछ स्क्रीन टाइम जो है वो कुछ क्षणों के लिए या तो कुछ घंटे के लिए रखें, लेकिन बार बार उसकी आदत मत लगाइए, है ना। तो ये मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ इसलिए कोई ज्ञान आपको दे रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, और हमें तो बस सनशाइन चाहिए, तो फिर हम उठ के भागेंगे, कुछ काम करेंगे और अंदर एक स्फूर्ति आ जाएगी। तो ऐसा ही हम एक गाना सुनने जा रहे हैं अवनी के साथ, आप सुन रहे हैं FM Rainbow।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: अपनी पसंद की कोई भी कार ले, कॉस्मोस कार लोन है ना।
1: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
0: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
1: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
4: प्रोग्राम चल रहा है मस्त मुंबई और आज है 10 सितंबर तो आज के दिन के साथ जुड़े हुए इतिहास के बारे में हम बात करना चाहेंगे। आज ही सिलाई का जो पेटेंट मशीन है वो तो हम देखते हैं लेकिन वो कभी हुआ था उसका आविष्कार 1846 में। इस दिन एलियस होवे को आधुनिक युग को बदलने वाली सिलाई मशीन का पेटेंट मिला था। और आज ही के दिन इंडियन एयरलाइंस विमान का अपहरण था।

अपहरण हुआ था 1976 में दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से मुंबई जा रहे इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान का अपहरण कर लिया गया था और बाद में सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया था। आज के दिन आपने कुछ ऐसे हस्तियां होती है जिनके नाम हमें नहीं मालूम होते, जैसे कि बाघा जतिन, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी जतींद्रनाथ मुखर्जी, जिनको बाघा जतिन के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों से लड़ते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 10 सितंबर 1915 को बालासोर के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज के दिन के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें और भी करेंगे, इसके पहले हम एक गाना सुनना चाहेंगे सुखविंदर सिंह की आवाज में। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल।

जीवन है चलने का नाम, जीवन चलने का नाम है तो चलते रहना है, कभी अप डाउन्स आते रहते हैं ये सोच के चलना है, कभी हमारे सामने जो होते हैं उनको गुस्सा आता है या उनके मन में कुछ और चल रहा है, आपके मन में कुछ और चल रहा है, तो वो जो लिंक है वो कनेक्ट नहीं हो पाती, तो हमें लगता है अरे हमें ये क्या बोल रहे हैं, और उनको लगता है कि ये समझते नहीं है, या तो समझ नहीं पा रही या तो नहीं पा रहा, तो ऐसा होता है लाइफ में। लेकिन इसको अगर आप बाहर की दुनिया को देखने जाओ तो आपको पता चलेगा कि दूसरे लोगों को कितनी प्रॉब्लम है, तब जाके आपको कुछ नहीं है, फिर भी आप मतलब ऐसे ही मुंह चढ़ा के बैठे रहते हो, तो ऐसा नहीं करना है, है ना, क्योंकि आपकी वजह से दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे, तो आपको तो कोई तकलीफ है ही नहीं, फिर भी आप मुंह चढ़ा के बैठे हो, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, हमें नाराज भी नहीं होना है। अच्छा, आज की बात करूँ तो आज के प्रमुख व्यक्तियों के जन्म गोविंद वल्लभ पंत को हम याद करेंगे, जिनका जन्म हुआ था 1887 में, भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म आज के दिन हुआ था। वे देश के गृह मंत्री भी रहे और उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, हम उनको सादर नमन करते हैं। और बर्थडे है चित्रा मुद्रल, जो 1944 में उनका बर्थडे है, आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की प्रतिष्ठित और सम्मानित लेखिका चित्रा मुद्रल का आज जन्म हुआ था। बीडी जत्ती 1912 में उनका जन्म हुआ, भारत के पांचवें उपराष्ट्रपति और देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती का जन्म 10 सितंबर को हुआ था। और आज जन्मदिन है अनुराग कश्यप का, जो कि 1972 में उनका जन्म हुआ, हिंदी सिनेमा जगत के जाने माने और कहते हैं ना लीक से हटकर फिल्में बनाने वाले फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप जी का आज जन्मदिन है। अनुराग जी, आपको बहुत सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं, और हम आपको ये जो गाना है वो आपके बर्थडे पर डेडिकेट करना चाहेंगे।

आज अगर बर्थडेज के बारे में बात करें तो आज एक प्रसिद्ध कलाकार अदाकार उनका भी बर्थडे है और उनका नाम है अतुल कुलकर्णी। अतुल कुलकर्णी जी का आज बर्थडे है। उनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1965 को और आपने बहुत सारी उनकी प्रसिद्ध हिंदी फिल्में जो चांदनी बार है, दम, सत्ता है, खाकी, पेश थ्री, रंग दे बसंती, लाल सिंह चड्ढा, भीड़, मर्डर, मुबारक, बहुत सारी फिल्में, और अगर बात करने जाऊँ तो उनको दो बार नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया है एज अ सपोर्टिंग एक्टर, हे राम और चांदनी बार के लिए, इस दोनों फिल्म के लिए। तो ज़्यादा बातें करनी नहीं है क्योंकि उनको बर्थडे विश करना है। अतुल जी, आपको हम सब की ओर से, FM रेनबो की ओर से ढेर सारी बर्थडे की शुभकामनाएँ, और आपको हम ये जो गाना है वो समर्पित करना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं, हैप्पी बर्थडे अतुल जी।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, अभी के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। समाचार में आगे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना अगले साल शुरू हो जाएगी। श्री वैष्णव ने बताया है कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। समाचार में आगे, नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज बचाव और फॉरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 55 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया गया है। समाचार के अंत में, आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अभी के मुख्य समाचार यहाँ पर समाप्त हुए। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.

कुछ गाने ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि हम भी साथ में गाए, सुकून वाले गाने होते हैं ना। ऐसा हमने गाना सुना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। नमस्ते भारत में आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगी और आपको बताना चाहूँगी कि आज हम नमस्ते भारत में किन पे बात करने वाले हैं। छोटी सी एक हिंट देती हूँ कि इस बार स्कूली शिक्षा के महाराष्ट्र के कुल 4 शिक्षकों को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है, तो उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक गाना सुनेंगे।

0: Great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प.
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने शर्तें लागू.
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ.
3: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
4: हम बात कर रहे हैं आज, जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार स्कूली शिक्षा के महाराष्ट्र के कुल चार शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है और इन चारों शिक्षकों ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतरीन अनोखे प्रयोग किए. तो क्या किया उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी. सबसे पहले वैभव वसंतराव कुलकर्णी, लातूर से अगर कोई हमें सुन रहे हैं तो उनको बताना चाहूँगी कि बहुत ही प्राउड की बात है हमारे लिए. पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय लातूर योगदान, इन्हें अध्यापन का 3 दशकों से भी अधिक का अनुभव है और इन्होंने मैथ्स की कठिन संकल्पना जो कहते हैं ना, उसको छात्रों के लिए बेहद आसान बनाया. कभी कभी ऐसा होता है, हम आपको आपके साथ ऐसा कभी हुआ है?

साथ आप ज़रूर शेयर करना कि वैसे बच्चों को मैथ्स या तो बिल्कुल नहीं पसंद आता या तो बहुत पसंद आता है। अगर मेरी बात करूँ तो मुझे मैथमेटिक्स जो है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है आज तक, क्योंकि मुझे सर बहुत अच्छे मिले थे, ताकि मुझे वो जो पीरियड है वो मैं गाने सुनते सुनते भी मैं मैथमेटिक्स कर लेती थी। और टेंथ की बात करूँ तो मुझे 99 मार्क्स आए थे बोर्ड में। ये मतलब बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैथ आजकल भी हम देखते हैं कि बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए इजी नहीं है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए समझ में नहीं आता। और फिर मन में ये हो जाता है कि अरे हमें नहीं आता, या तो पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथ जो है वो गेम्स जैसा है। आप जो बाहर गेम खेलते हो वो आपको मैथ में खेलनी है, और कुछ नहीं करना है। तो खैर, सर की बात करूँ तो इसके लिए उन्होंने कम खर्चीले और इनोवेटिव वीडियोज़ बनाए, और शैक्षणिक जो टूल्स है वो विकसित किए, और ताकि बच्चे जो है वो आसानी से मैथ सीख पाए। तो वैभव वसंतराव कुलकर्णी जी को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे इस अवार्ड के लिए, क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए इजी से इजी, वो बच्चे इजी कैसे सीख पाए वो उन्होंने सिखाया। तो चलिए, एक ऐसी फिल्म का गाना जो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ सिखाया गया है, बहुत ही अच्छा ये गाना हम सुनना चाहेंगे और इनको डेडिकेट करना चाहेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ यानी कि उन्हीं के साथ, ओनली ऑन FM रेनबो

बहुत सारी वैसे बातें तो करनी है। जैसे हम टीचर्स डे तो इस बार यानी कि 5 सितंबर को होता है, और उस दिन हमने यानी कि सरकार ने इन बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनको नेशनल अवार्ड से नवाजा है और नवाजा था उस दिन। और जिस पे हमने बात की, टीचर जो है, हम अगर शिक्षक के बारे में बात करें, मैं ऐसा मानती हूँ कि जहाँ से जिनसे जिनको जीवन जीने की एक नई राह मिल जाए, और जीवन का कहते हैं ना, जीवन को विकसित हुए उन्हें, हम अध्यात्म जगत के बारे में बात करें तो गुरु, और हम जो ये अभी जो बात कर रहे हैं, कोई टीचर के पास सीख रहे हैं, शिक्षक के पास, तो हम उन्हें शिक्षक कहते हैं। लेकिन ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आप कोई लैंग्वेज का पीरियड मतलब अटेंड कर रहे हो और उसमें आपके साथ हो? मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं कोई कविता पढ़ती थी और मेरे जो टीचर मुझे पढ़ाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि टीचर बोल रही है, कविता में एक मैसेज आता है कि जीवन में ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, तो टीचर जो है वो अपने ऐसे ही होंगे, और ऑब्वियसली होते ही थे। लेकिन ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि अच्छा, इन्होंने बोला है तो वो एकदम सही बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, इसलिए हमें भी वैसा ही अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। एक्चुअली तो हमारे जो भी पाठ्यक्रम आते थे, चाहे लेसन हो या कोई पोम्स हो, तो उसमें हमें यही सिखाया जाता था। हम सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ते थे, लेकिन हम अपनी लाइफ में, अभी कुछ कविताएं हैं तो हमें आज भी याद है। एक सुविचार है जो मुझे अभी ऐसे ही याद है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। ये हमारे टीचर ने बताया था। ये मैं आपको 4th 5th स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ, तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, ज़रूर हुआ होगा, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और आज बहुत सारे दिन भी हैं, तो हम एक गाना जो है वो अपने फ्रेंड को शेयर करना चाहेंगे जो कि दिल्ली में रहते हैं। जैसे अभी किसी ने तो हमें बोला था ना उनके फ्रेंड के लिए कि वो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, और उन्होंने अपने फ्रेंड को बहुत ही मतलब प्यार से समझाया था, ऐसा ही कुछ तो है। तो ये गाना है, बहुत ही प्यारा सा गाना है, चलिए सुनिए मेरे साथ ओनली ऑन FM रेनबो।

नमस्ते भारत, अपना कार्यक्रम चल रहा है और बहुत सारे हमारे और भी लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे कि मनीषा फंसे हैं, पंकज मोहन जी है, वैदे ही है, प्रमोद चिंचोलकर, प्रकाश शिंदे, दिवाकर शेनोई, बाबा दादर से अनिल तामोरे, आकांक्षा और फरमान है, शुभलक्ष्मी मस्तकर है, किशोर नायक है, विजेंद्र कहाटोल है, बहुत सारे अपने जो फ्रेंड्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। और कुछ लोग हमें ये भी बता रहे हैं, प्रकाश जी बता रहे हैं कि ये जो अभी टीचर्स की बात हो रही है तो हमें एक कविता याद आ रही है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, मेरा नया बचपन। बार बार आती है मधुर याद बचपन तेरी, कॉलेज के दिनों पड़ी थी ऑब्वियसली। और मुझे, मेरा एक अनुभव कहूँ तो मुझे मेरे प्राइमरी के जो टीचर्स हैं वो सबसे ज़्यादा याद है, उसके बाद वाले भी याद है, फिर आप हाई स्कूल में गए, आप हायर सेकेंडरी में गए, फिर आप कॉलेज में गए, लेकिन पता नहीं जो बचपन के यानी कि फर्स्ट टू सेवन्थ वाले टीचर्स हमें इतने क्यों याद है कभी भी। और वो माहौल ही कुछ अलग था, मतलब बच्चे आके टीचर्स को पैर पड़ते थे, कितनी अच्छी बात है ना। और वो टीचर्स को आके फिर कुछ सालों के बाद बोले कि मैम कैसे हो, मैम को तो याद नहीं होगा लेकिन मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं इंजीनियर, मैं CA हूँ, मैं कलेक्टर हूँ। तो अगर मेरी बात करूँ तो मेरी मम्मी भी रिटायर्ड टीचर हैं, बट हमारे घर पे कभी भी जाओ तो बच्चे पढ़ते ही हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना, और एक चीज़ ऐसी कि जिसके फादर नहीं है या तो जिनकी मतलब पेरेंट्स की आमदनी कम है, इनकम कम है, तो उनके पैसे नहीं लेने के, ऐसे होते टीचर्स। और क्या बताऊँ, मतलब ऐसे आपको भी अगर मौका मिलता है कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ाने का कि जिनको कुछ ज़रूरत है तो ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि वो आपको ज़रूर याद रखेंगे। मुझे अभी भी याद है कि मम्मी को जब कोई आके बोलता है कि मैम पहचानते हो मैं कलेक्टर हूँ या तो कमिश्नर हूँ, तो मैं देखती रह जाती थी कि वो टीचर को तो याद नहीं है बट बच्चों को ज़रूर याद रहता है। बच्चे आपकी हैंडराइटिंग भी अगर टीचर की अच्छी है ना तो वो देख के, उस टाइम पे कर्सिव कॉपीराइटिंग बुक आती थी लेकिन इतनी उसके क्लासेस नहीं चलते थे, टीचर जो लिखते थे वो देख देख के ही बच्चे सीख जाते थे। तो खैर ऐसी बहुत सारी बातें हैं, एक और गाना सुना दूँ प्यारा सा श्री राम की आवाज़ में। जुड़े रहिए मेरे साथ यानी कि अवनी भट्ट के साथ, ओनली ऑन FM रेनबो।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर.
2: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू.
1: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध. कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि.
2: शर्तें लागू. टोल फ्री नंबर 1800-233-0234.
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक. जीवन बनाए समृद्ध.
3: Akashvani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
4: हम चार टीचर्स के बारे में बात कर रहे थे जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया. उनको बता दूं कि नमस्ते भारत में हम कुछ टीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है. अभी मैं बात करने जा रही हूँ डॉक्टर कविता नृसिंह राव गिट्टे, जो बीड़ से हैं, साने गुरुजी निवासी विद्यालय केज और बीड योगदान. डॉक्टर कविता ने दिव्यांग, विशेष आवश्यकता वाले, वंचित वर्ग और उस्तोड़ कामगारों यानी कि गन्ना काटने वाले मजदूरों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए सराहनीय काम किया है. उन्होंने आधुनिक तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्कूलों से बच्चों की ड्रॉप आउट, पढ़ाई छोड़ना दर को रोकने के लिए कई बेहतरीन प्रयोग किए. आपके दिमाग में कभी आता है कि हमारे आजू बाजू में तो वैसे नहीं रहते, लेकिन आप रोड पर जाते हो या कोई बच्चे होते तो आपको मन होता है कि उनको हम पूछें कि तुम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं. मतलब आप पूछते भी होगे, लेकिन ऐसा होता है हमारे उधर जो म्यूनसिपलिटी स्कूल है उसमें तो बच्चों को पढ़ाया ही जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जाते वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए. पता नहीं वो उनकी कोई या तो मजबूरी होगी या तो फिर पेरेंट्स नहीं भेजते होंगे, ऐसा भी हो सकता है. लेकिन ऐसा अगर ऐसे अगर कोई आपको मिले और आप उनको समझा सके तो आप ज़रूर समझाइए. और कुछ अगर मदद की ज़रूरत पड़े तो भी जितनी हो सके, ऐसा नहीं कि इतनी ही मदद करनी है, लेकिन वो हम कर सकते हैं ताकि हम उनका भविष्य आगे बढ़ा सकते हैं. तो ऐसे ऐसे कहते ना, एक टिप टिप जो पानी है उससे नदी बहती है, पूरा दरिया बनता है. तो ऐसे ही भारत, ऐसे ही तो विकसित देश बनेगा. तो या तो फिर दो बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं लेकिन उनके कोई सब्जेक्ट्स वीक हैं और आमदनी उनकी कम है पेरेंट्स की, तो उनको भी हम घर पे बुला के या उनकी जगह पे जाके थोड़ा सा पढ़ा सकते हैं. इतना तो हम ज़रूर कर सकते हैं. आइए दूसरा गाना सुनते हैं. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल और मैं हूँ आपकी होस्टिंग दोस्त RJ अवनी. हाँ, एक और चीज़ भी है. एक टीचर के बारे में अभी बता ही दूँ मैं आपको, कुंदा जयवंत बच्छाओ, जो कि नासिक से है और इन्होंने बच्चों को मोबाइल की लत से दूर करने के लिए मिशन मोबाइल फ्री अभियान चलाया और साथ ही इन्होंने ज्ञान भीति और आनंद वाली शिक्षण कटा जैसे ज़मीनी स्तर के अनूठे उपक्रम शुरू किए. इन दोनों को हम ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहेंगे क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं.

आज हम बात कर रहे हैं कि जिनको अवार्ड से नवाजा गया, कुछ टीचर्स को, सबके बारे में तो हम बात नहीं कर पा रहे, लेकिन चार के बारे में हम बात कर रहे थे। तो एक टीचर है जिनका नाम है शिव प्रसाद अरविंद टिगरे, जो कि सतारा से है, और इन्होंने छात्रों में कड़ी अनुशासन भावना, जैसे हम डिसिप्लिन होनी चाहिए नहीं तो कोई काम हो नहीं सकता, इन्होंने छात्रों में वो दिया और लीडरशिप स्किल्स भी दी, वो भी आजकल बहुत ज़रूरी है, और देश सेवा की भावना जो है वो भी जगाई। तो जिनके बारे में हमने आज बात की, चारों टीचर्स के बारे में, हम उन्हें ढेर सारी शुभेच्छाएँ देते हैं। और बस 10:53 होने को है, तो समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। सो अपना और अपनों का ख्याल रखें। और आज हमने जो बात की कि कुछ भी आपके दिमाग में आता है, कुछ आप डिप्रेशन में हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको बताएंगे तो कौन क्या सोचेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है वो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours.
1: नमस्कार, समय है हिंदी में मुख्य समाचारों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूर्या से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेखनी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। खबरों में आगे है, गणेशोत्सव को राज्य महोत्सव का दर्जा दिए जाने के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार देश भर के विभिन्न शहरों में गणेशोत्सव के संबंधित विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। महाराष्ट्र सांस्कृतिक कार्य विभाग के अंतर्गत इस महीने में ये कार्यक्रम देहरादून, चेन्नई और सिलवासा में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। खबरों के अंत में, अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शेल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में आठवीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमेरिकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं।
0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स।
1: म्यूजिकली योर्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। 11:02 हो गए हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। मेरा नाम है आरजे कंचन। वेल, शो जो शुरू होने जा रहा है उसका नाम है ब्रेक फ्री और शुरुआत करते हैं ऐसा खूबसूरत गानों के साथ। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होंगी आपके और हमारे दरमियान। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल और आज है थ्रिलिंग थर्सडे। जी हाँ, मेरा नाम है आरजे कंचन और आप सभी के साथ रहूंगी मैं ठीक दो बजे तक। ब्रेक फ्री शो स्टार्ट हो चुका है और वैसे तो एक बहुत ही खास मुद्दे पे आज मैं बात करने जा रही हूँ। आज एक खास दिन हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में जानेंगे कुछ ही देर में। आप सब हमारे साथ बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। अगला गाना आप सभी के लिए

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: Great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर.
3: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू.
2: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध. कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि.
3: शर्तें लागू. टोल फ्री नंबर 1800-233-0234.
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक. जीवन बनाए समृद्ध.
4: वेल, आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं. वैसे तो शो चल रहा है ब्रेक फ्री और हमेशा हम यही कोशिश हमारी यही रहती है कि आप सभी के साथ एक कहते हैं ना एक पॉजिटिविटी के साथ हम सभी आप सभी के साथ जुड़े रहें और कोशिश यही रहती है कि 24/7 जब भी हम बात करते हैं ऐसे थॉट्स हमारे ख्याल ऐसे होने चाहिए जिससे कि हमारी ज़िंदगी हमें और खूबसूरत बनाने में हमें मदद मिले. कहते हैं जब भी वैसे तो बहुत ज़्यादा यू नो टीचिंग या फिलॉसफी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यदि आप बाहर निकलें आपको लगता होगा या हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद हमसे ज़्यादा दुखी कोई और इस दुनिया में है ही नहीं. यकीन मानिए, मेरा एक क्या बहुत अक्सर मैं कई बार ये बात यूज़ करती हूँ कि ज़रा मैदान में आइए तो सही, आप समझ जाएंगे कि आप कितने अच्छे उन लोगों से सिचुएशन में हैं, कितने खुश हाली जो इनको आप समझ नहीं पा रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में पहले से बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन बस कहते हैं ना नज़रिए की बात होती है. और कहते हैं ये भी कि ख्वाबों का बोझ बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और ड्रीम्स या फिर ऐसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लाइफ से हो जाती है जिसकी वजह से कई बार निराशा हाथ लगती है. वैसे बहुत ज़्यादा आप सभी के साथ ज्ञान की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि जब ज़िंदगी हमें उस ऊपर वाले ने दी है तो उसको जीना ज़रूर सीखना चाहिए. और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, क्योंकि अक्सर जब कोई इंसान वो कदम तक पहुंचता है, यानी कि कहते हैं ना वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे आज है 10th of September, तो उस कदम तक अगर कोई पहुंचा है तो उसके लिए बहुत बार कहा जाता है कि बहुत ही वीक रहा होगा ये इंसान. लेकिन यकीन मानिए, अपने आप को एक चोट यानी कि एक हाथ में उंगली में भी अगर आप कोई चीज़ अपने आप को एक इन्फ्लिक्ट करते हैं तो उसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है. तो इसलिए जो ये कहते हैं कि वो कायर हैं या फिर ऐसे, तो उनसे मेरा केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसे थॉट को ऐसे नैरेटिव को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्या खास है इस बार का थीम, इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सुन लेते हैं एक खूबसूरत सा गाना अब इस खूबसूरत गिफ्ट के लिए जिसे हम जिंदगी कहते हैं.

जिंदगी को कहते हैं पहेली, नादानों वो तो है सहेली। हाथ पकड़ के साथ चलो तुम, दो दो बातें चार करो तुम, खेलेगी वो साथ तुम्हारे। डरना नहीं ओ मेरे प्यारे,

थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक, और कहते हैं ना कि ज़िंदगी का वाकई अगर हम कहीं एक तर्क थोड़ा सा निकालें तो ये मैजिक से कम थोड़े ही है। यकीन मानिए, अगर आपको कभी लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जितने गम हैं उतना किसी और की लाइफ में नहीं है, तो एक छोटा सा ट्रिप आप ज़रूर कहीं, कहते हैं ना, आप हॉस्पिटल्स चले जाइए या फिर ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पर ऑर्फनेज चले जाइए, तो आपको लगेगा कि क्या आप उनसे ज़्यादा सैड हैं, क्या आप उनसे ज़्यादा दुखी हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब ज़िंदगी की बात करते हैं तो जितना भी उसका शुक्रिया करें हम कम है। मुझे लगता है इस वक्त ये गाना आप सभी को डेडिकेटेड है, क्योंकि आज 10th of September, आज एक बहुत ही ख़ास दिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस बार का थीम क्या है? इस बार का एक बहुत ही खूबसूरत सा थीम है जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहले सुन लेते हैं ये गाना।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प.
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने शर्तें लागू.
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ.
3: अंकोर वाट विष्णुधाम कंबोडिया हेरिटेज यात्रा विश्वातील सर्वात मोठ्या मंदिराची एक अद्भुत अनुभूती.
4: 2 ते 10 डिसेंबर 2026 इतिहास, संस्कृती, वारसा, मंदिर स्थापत्य आणि परंपरा यांचा अनोखा संगम.
3: अंकोर थॉम, बयॉन, बांटी श्री सह 14 मंदिरे, नॅशनल म्युझियम, टोनले सॅप आणि विशेष आकर्षण अप्सरा नृत्य.
4: सोबत प्रख्यात लेखक व मंदिर स्थापत्य तज्ञ प्राध्यापक क्षितिज पाटुकले, शाकाहारी भोजन, 5-स्टार हॉटेल्स, आतापर्यंत 1200 अधिक जणांची कंबोडिया भेट.
3: विमान प्रवास, व्हिसा, सर्व खर्चासह 15 सप्टेंबर पर्यंत विशेष पॅकेज 1,40,000 रुपये फक्त.
4: ऑनलाइन बुकिंग साठी कंबोडिया अंकोर फाउंडेशन डोंबिवली. संपर्कासाठी फोन 98 21 40 38 38.
5: फोन पुन्हा एकदा 98 21 40 38 38.
6: Akashwani FM Rainbow 107.1 megahertz, musically yours.
7: म्यूजिकली योर्स, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं आज वर्ल्ड सुइसाइड प्रिवेंशन डे, और इसका जो इस बार का थीम है यानी कि 2024 से लेकर 26 तक का जो थीम है वो है चेंजिंग द नैरेटिव, यानी कि जो विचारधारा चल रही है उसको चेंज करने की, उसमें बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जब भी हम कभी सुनते हैं हमारे आसपास या किसी के बारे में हम ये सुनते हैं कि वो हर बार उसके मुंह से, जब भी वो दुखी होता है उसकी ज़बान से कभी ना कभी ये ज़रूर निकलता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या मुझे यू नो सुसाइड करना है, मैं ज़िंदगी से थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ. जब ये बात सुने आप तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि वो बोलते बोलते उनको शायद ये चीज़ का इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि वो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने थॉट में, अपनी परसेप्शन में, कि उनको ये एक आम चीज़ लगने लग जाती है. तो यदि आपकी फ़ैमिली में या फिर आपके सराउंडिंग में, आपके फ्रेंड्स सर्कल में, या यू नो जो भी आपके सोसाइटी में या कहीं पर भी आप ऐसी कोई बात सुने तो ज़रूर आगे बढ़कर उनकी मदद करें जहाँ तक हो सके. सबसे बात मतलब मेरा एक मानना है कि कम्युनिकेशन इज़ द की. बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बातचीत करने से काफ़ी मसले हल हो जाते हैं. हाल फिलहाल में हमने देखा कि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको लगता है कि कहने को, दिखने से हमारे को या पेरेंट्स को बहुत छोटी सी बात लगती है,

कि इतनी सी बात पर इसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। लेकिन हो सकता है कि ये बात छोटी आपके लिए हो लेकिन उस नौजवान या उस लड़की के लिए ना हो जिसने ये कदम उठाया हो। वेल, कुछ भी परेशानी अगर लाइफ में होती है, हमें ये मान के चलना होता है कि हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन ज़रूर होता है। तो वो सल्यूशन ढूंढने की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, काफ़ी सारे हेल्पलाइंस होते हैं, और अगर वो भी काफ़ी ना हो तो जहाँ तक हो सके नेवर फील अलोन। कहते हैं ना कि आप अपने आप को अकेला समझिए ही नहीं। वैसे जो भी ये हम बातें करते हैं ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हमारे जुड़े हुए हैं, और कोशिश हमारी एफएम रेनबो टीम की यही रहती है कि आप सभी से बातें करें, आप सभी के विचार हम भी समझें। आपके कौन से विचार अगर आप शेयर करना चाहें इस मुद्दे को लेकर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कर सकते हैं, आगे शो में हम उनको ले सकेंगे और आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657 6610071।

बात हो रही थी कि कैसे यूथ जो है बहुत ही जल्दी, उनको हर चीज़ इंस्टेंट, मतलब कि अगर ये चीज़ इस वक्त नहीं हो रही है तो ये क्यों नहीं हो रही है, और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट कई बार हो जाते हैं और उनको उस सिचुएशन को डील करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अच्छा, कई बार जब वो कदम उठा लेते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि क्योंकि उन्होंने गुस्से में ऐसी कोई बात की होती है कि मैं तुम्हारे को दिखाने के लिए ऐसा कदम उठाऊंगा या उठाऊंगी, उसकी वजह से क्या होता है, जस्ट टू यू नो पैम्पर देयर ईगो, उनको लगता है कि मैंने ये बात कह दी है तो मैं ये ज़रूर ये करके दिखाऊंगा, तभी इनको हमारे पेरेंट्स को या जिसकी वजह से उन्होंने अपनी साथ ये यू नो ये कदम उठा अपने जिसकी वजह से उन्होंने अपने साथ ये गलत कदम उठाया है, वो प्रूव करने के लिए, सिर्फ उनको एक प्रूव करने के लिए, अपना एक पॉइंट प्रूव करने के लिए हर ये कदम उठा लेते हैं। और उसके बाद ये एक इतना बड़ा कदम होता है कि जिसकी भरपाई कभी हो ही नहीं सकती। आज का ये जो शो हम लेकर आए आप सभी के साथ, इसमें इसका तात्पर्य ही यही है कि एक मैसेज एक पुट अक्रॉस कर सकने में सक्षम हो कि कितना ज़रूरी होता है एक दूसरे से बात करना, ख़ास करके आजकल की जो ये वर्चुअल दुनिया हो चुकी है जहां हम सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल तक सीमित रह गए हैं। जहाँ तक हो सके साथ में एक मील ज़रूर फैमिली को करना ही चाहिए, चाहे फिर वो लंच हो या डिनर। और पॉसिबिलिटी यही होती है कि जब आप टेबल पे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तब आपको ये लगता है कि एक दूसरे के साथ दिन भर में क्या चीज़ें हुई हैं, एक कनेक्ट बना रहता है। सोशली डिसकनेक्ट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक हो सकता है एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। पहले अपने आप को अकेला छोड़ना या अकेला समझना अपने आप के बारे में कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस थॉट से बाहर आना है। बहुत सारी बातें हुई इस शो के बारे में और आज के इस मुद्दे के बारे में, आपकी क्या राय है आप हमें ज़रूर बताएं। और यूं ही हम जब भी हम आपसे बात करते हैं आपके थॉट्स भी हम लेकर चलते हैं। मैं डेफिनेटली कुछ मैसेजेस साझा करूँगी, बने रहेगा हमारे साथ।

काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे आए जिनमें से कि कुछ नामों को मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। प्रकाश निजी, राजेंद्र परमार, विजेंद्र घटोल, और आप सभी ने बहुत अच्छी बातें भी लिखकर मुझे भेजी और ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगी आगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी आप सब जुड़ते हैं हमारे साथ और अपने विचार शेयर करते हैं, वाकई लगता है कि कुछ जो कोशिश हमारी होती है आप सभी तक अपने बात पहुंचाने की, और ख़ास करके गानों के ज़रिए, तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होता है। अमित भगत जी, आपका भी शुक्रिया। राकेश जी, थैंक यू। फिरोज जी, थैंक यू सो मच। अशोक पाटिल, आपने भी बहुत अच्छी बात की। राजेंद्र जुटानी जी, आप सभी का। प्रमोद जी, आप सभी का। हितेंद्र दास, आप सभी का दिल से शुक्रिया। वेल, इस शो के बाद ठीक 12 बजे होगा हिंदी में मुख्य समाचार, उसके बाद होगा कार्यक्रम म्यूजिक कैफे। कहीं जाइएगा नहीं, आप सुन रहे आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। स्टे ट्यून्ड। अगला गाना आप सभी के लिए।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, ठीक 12 बज चुके हैं। समय है हिंदी में मुख्य समाचारों का। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस रविवार को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कल बताया कि अपने संबोधन में वे विश्व की बदलती बहुध्रुवीय वास्तविकताओं को सामने रखने में ब्रिक्स की भूमिका का समर्थन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित यह शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। खबरों में आगे है, उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को गैंगस्टर अबू सलीम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने इस आधार पर हिरासत से रिहाई का अनुरोध किया था कि पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण की शर्तों के तहत भारत में जेल में उसके 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मुंबई के 1993 के बम धमाकों के दोषी सलीम को 2005 में पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। खबरों में आगे है, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की घटक सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा अब 3 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। इससे पहले यह परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को होने वाली थी। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने कल यह जानकारी दी है। खबरों के अंत में, महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। यह मैच शाम 8 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं।
0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स।
1: और म्यूजिकली योर्स बज गए 12:02। शो जो शुरू होने जा रहा है उसका नाम है म्यूजिक कैफे, और खास करके हम नौजवानों से करते हैं इस शो में बात, उन्हीं की बातें लेकर आते हैं। और आज के जो टॉपिक जो चल रहा था सुबह से, क्योंकि आज 10 सितंबर है और बहुत ही खास दिन की हम बात कर रहे थे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की हम बात कर रहे थे। वैसे तो हमने जो बातें की उस सिलसिले में एक गाना इस शो की शुरुआत में हम प्ले करेंगे और उसके बाद जानेंगे बहुत सारी और दूसरी बातें भी करेंगे आप सभी के साथ। गानों की भरमार होगी, कहीं जाइएगा नहीं। स्टे विद मी ऑन म्यूजिक कैफे।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। शो जो शुरू हो चुका है उसका नाम है म्यूजिक कैफे, और हम बात कर रहे थे कैसे यंगस्टर्स को साथ में लेके चलने की। वैसे एक वर्ड जो बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, जेन जी। आपको पता है जब हम जेन जी की बात करते हैं, उससे पहले ऑफकोर्स मिलेनियल्स थे, उससे पहले जेन एक्स थे, और अब जो जेन जी के बाद जो जनरेशन आएगी वो जेन अल्फा है। तो कहते हैं ना कि ये जो जनरेशनल गैप है, ये ऐसा नहीं है कि हमसे पहले नहीं था या हमारे बाद नहीं होगा। जो हर जनरेशन अपने हिसाब से उस के लिए कहते हैं रॉक स्टार्स, वो रॉक स्टार्स ही रहेंगे। तो जेन जी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है और सडनली सबको लगने लग गया कि एक पावर सा आ गया है जेन जी वर्ड जब हम यूज़ करते हैं। और क्यों ना हो भाई, यूथ ही हमारे देश का भविष्य है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये वर्ड को या इसकी वर्ड के पीछे की ताकत को कई बार थोड़ा सा मिसयूज़ भी कर लेते हैं, या फिर इसके बारे में एक ओवर कॉन्फिडेंस, या यूँ कहें कि एक विचारधारा से थोड़ा सा हट जाना, वो भी सही नहीं होता है।

मीम्स आपको नजर आएंगे। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जितनी जो हमें उस ऊपर वाले ने जो ये ज़िंदगी दी है, इसके प्रति हमारी एक बहुत ही ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को संभाल कर चलना, इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं। बहुत हो गई ज्ञान की बातें हैं, सुनते अगला गाना। और जब भी ऐसी बातें हम करते हैं, हमारे को काफ़ी सारे मैसेजेस हमारे लिसनर्स के आते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है उन्हें पढ़ कर। इसीलिए कहते हैं ना कि FM रेनबो टीम की खासियत यही होती है कि अपने ऑडियंस के साथ जुड़ना, उनके भी विचार लेना और उनको लेकर अपने साथ चलना। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गाना जो आप सभी के लिए, थोड़ा सा लेजी होना हम सभी को ज़रूर अपने लिए टाइम निकालना होता है, और जब हम लम्हों की बात करते हैं बहुत ज़्यादा फुर्तीले तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन कभी कभी लेजी होना भी बहुत अच्छी बात होती है। सो आप सभी के लिए

0: great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: म्यूजिक कैफे में कुछ चंद लाइनें मैं अपने यंग ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि लाइफ में परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस रियल रहें। बहुत ज़्यादा हम रीलों में घुस गए हैं, सो क्योंकि असली ज़िंदगी की वाइब तो वही होती है जो दिल से आए, तो रील से हटकर थोड़ा रियल लाइफ में भी आए। कंपैरिजन छोड़िए और अपने वर्जन को अपग्रेड कीजिए। यस, एजेंसी लिंगो जिसे कहते हैं लैंग्वेज, फॉलोअर्स कितने हो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आपके साथ कितने जेन्युइन लोग हैं मौजूद वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फेल होना एंड नहीं, कभी कभी वही फेलियर नेक्स्ट लेवल की शुरुआत होती है। ड्रीम बड़ा रखने से हर छोटी शुरुआत से ही शुरू करनी चाहिए, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शुरुआत कैसी है। अच्छा, फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने से पहले अपने सपनों की बैटरी रिचार्ज कर लें। ट्रेंड फॉलो करने से पहले अपनी आइडेंटिटी बना लें। आज का छोटा सा कदम कल की बड़ी अचीवमेंट बन सकता है, सो मेंटल पीस भी सक्सेस का हिस्सा है। हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सुनना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जेंसी के नाम एक बात, अपनी कहानी किसी और की टाइमलाइन देखकर ना लिखें और अपनी कहानी खुद ही लिखें। अगला गाना आप सभी के लिए,

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल, और आप सभी को बता दें कि ठीक 12:30 बजे यानी 12:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। आप सभी के लिए अगला गाना

0: पतंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। करते हैं शुरुआत गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी जी द्वारा भेजे गए सुविचार के साथ। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। सचमुच कैसे नादान हैं हम सब। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। आपके सुविचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच है श्रोता मित्रों, जीवन को जीने का हमारा दृष्टिकोण हमेशा संतुलित और परिपक्व होना चाहिए। सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। ग्राम बंगला माटिया बालूद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं, जल है तो कल है, वृक्ष है तो फल है। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने। मिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी, और शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज के प्रेरक प्रसंग में एक बार फिर से हम याद करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर को जब अंग्रेजी शासन का शिकंजा भारत पर कसता जा रहा था। हम आजादी के बहुत से अमर शहीदों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम तीन ऐसे नौजवानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, लगभग नहीं के बराबर। मित्रों, अगर मैं कहूं कि मात्र 18, 19 या 22 साल के तीन आजादी के दीवाने नौजवान अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित सरकारी भवन में घुस गए थे तो क्या आप विश्वास करेंगे? असंभव सा लगता है ना, लेकिन ऐसा हुआ। वे तीन जवान थे बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। उन दिनों कोलकाता में अंग्रेजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दफ्तर था जो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। ये ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी वहीं बैठते थे। ये 8 दिसंबर 1930 की घटना है। सामान्य दिन था। अंग्रेज अधिकारी अपने दफ्तर यानी राइटर्स बिल्डिंग में आ चुके थे और अपना काम कर रहे थे। महत्वपूर्ण जगह होने के कारण वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुरक्षा का घेरा तोड़कर बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता उस भवन में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग दोपहर की बात है, वे तीनों युवा क्रांतिकारी भवन में घुस गए। उस दफ्तर में कई भारतीय भी काम करते थे, इसलिए उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों जैसा पहनावा पहना और अंदर प्रवेश किया। उनके निशाने पर थे लेफ्टिनेंट कर्नल एनएस सिम्पसन, जो जेलों में भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ कठोर व्यवहार के लिए कुख्यात माने जाते थे। और देखते ही देखते तीनों ने लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन पर गोली चला दी। कर्नल की वही मृत्यु हो गई। इसके बाद वही हुआ जो आमतौर पर होता है, राइटर्स बिल्डिंग के अंदर ही ब्रिटिश पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। तो श्रोताओं, आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वे तीनों वहां से निकलने में सफल हुए? इसका उत्तर है नहीं। उन्होंने प्रण कर लिया था कि किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। वे समझ गए थे कि अब बच निकलना लगभग असंभव है। तो नौजवान बादल गुप्ता और बिनॉय ने स्वयं को गोली मार ली। बादल गुप्ता की वहीं पर मृत्यु हो गई। बिनॉय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1930 को उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके साथी दिनेश गुप्ता घायल अवस्था में पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला और 7 जुलाई 1931 को अलीपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। और अब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश ने इन तीनों की स्मृति को कैसे जीवित रखा। कोलकाता के बेहद प्रसिद्ध डलहौजी हाउस का नाम बदलकर बीबीडी बाग यानी बादल, बिनॉय और दिनेश रखा गया और एक स्मारक बनाया गया। श्रोताओं, एक बात बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि हम इन क्रांतिकारियों के साहस और बलिदान को आभार के साथ याद करते हैं, लेकिन हिंसा को जीवन का रास्ता नहीं मानते। हम बस उस दौर के इतिहास को उस समय के संदर्भ में समझते हैं। तो श्रोताओं, जब हम बीडीडी बाग का नाम सुने तो केवल उसे कोलकाता की एक जगह समझकर नजरअंदाज न कर दें। हम जरूर

0: याद करें इन क्रांतिकारी युवाओं को, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आजादी को केवल एक विशेषाधिकार की तरह ही नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह भी देखें, और जिन्होंने देश के लिए अपना आज दे दिया, हम उनके बलिदान को याद करके अपने आज को बेहतर बनाएं। तो श्रोताओ, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। आप 800-44-0559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF, और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बरसात और मेंढक। इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पशु पक्षियों और संपूर्ण जीव जगत का ख्याल रखना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए।
1: बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
3: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
4: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
3: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
4: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
5: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
6: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
1: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए।

टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी

0: हैं पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढ़क ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ,
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में रूस के एक भालू से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया गया है और ये संदेश दिया गया है कि हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी तरह से पहचानना चाहिए।
0: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए, जरा बताइए तो।
0: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
0: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया।

0: वो भूखा था और घायल भी।
1: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
0: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
1: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
0: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
1: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
0: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
1: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
0: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।
0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था?
0: बात स्पष्ट है। उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।

0: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
1: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
0: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: और अब सुनते हैं एक सुंदर गीत।
3: फूल सी गुड़िया हमारी,

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: Well, musically yours, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM Rainbow चैनल शो, जो शुरू होने जा रहा है उसका नाम है हिट एंड हॉट, जहां आपसे हम जानेंगे आपके थॉट्स और आपके मैसेजेस पढ़ेंगे और आपकी रिक्वेस्ट भी हम लेंगे. सो जल्दी जल्दी फ़ोन पर अपने मैसेजेस टाइप करना शुरू कर दीजिए. कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी के गाने हम प्ले कर सकें. कई बार क्या होता है कि एक गाना जो आप लिखते हैं उसके अलावा प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि एक दो गाना कोई और ऑप्शन ज़रूर दें. कई बार आपके जो लाइक्स होते हैं, यानी जो सॉन्ग्स की चॉइस होती है, वो भी सिमिलर होती है. सो हम कोशिश यही करते हैं कि डिफरेंट सॉन्ग्स आप सभी तक पहुंचा सकें. सो जल्दी जल्दी मैसेजेस कीजिए. हमारा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 8657661071. वैसे शो की शुरुआत में सुनते हैं ये गाना मेरी तरफ से आप सभी के लिए.

0: 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: हिट एंड हॉट में अगली रिक्वेस्ट जो मैं प्ले करने जा रही हूँ वो है मीरा सिंह जी, आपकी रिक्वेस्ट इंजॉय कीजिए और आपकी रिक्वेस्ट के बाद मैं प्ले करूँगी अगली रिक्वेस्ट जो कि है संदीप कुमार जी आपकी।

0: Because when we work together, possibilities become progress.
1: ऑलराइट दोस्तों, जो आखिरी दो बैक टू बैक रिक्वेस्ट मैं वो प्ले करने जा रही हूँ. पहली रिक्वेस्ट रहेगी हीरा मनी वर्मा जी आपकी, और उसके बाद राजेंद्र परमार जी आपकी रिक्वेस्ट. और इसी के साथ मुझे यानी आज कंचन को दीजिएगा इजाज़त. होगी आपकी और मेरी मुलाकात एक बार फिर जल्द, से कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ. आप सुन रहा आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल. Until next time, stay fit, stay happy, and stay tuned.

0: operations. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Odisha for today. The weather agency has forecast heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Gangetic, West Bengal and Bihar for next 3 to 4 days. The flood situation in Bihar improved slightly as water levels receded in several rivers. Relief and rescue operations have been intensified, a report.
1: Flood situation has improved slightly in the state as water levels in the Ganga, Son, Punpun, Gandak and Bagmati rivers have receded. Relief and rescue work has been stepped up. More than 4 million people in 14 districts, including Patna, Vaishali, Saran, Munger, Bhagalpur and Arwal, are affected by floods. Relief camps are providing food, medical camp and essential supplies. Hundreds of houses have been damaged, while nearly 700 rural roads remain underwater, affecting road connectivity. Road Construction Minister Engineer Kumar Shailendra has asked officials to keep a close watch on the roads and repair them as soon as the water recedes. The Education Department is also making arrangements to continue the studies of children in flood-affected areas. Meanwhile, the situation remains concern in Baltara, in Khagadia and Kursela in Katihar, where the Kosi is flowing about 1.5 meters above the danger mark. Teams of the Water Resources Department and District Administration are keeping a close watch on the situation. Nidhishree for Akashwani News.
0: In cricket, India will take on Bangladesh in the semi-final match of Women's Asia Cup today in Dubai. The match will begin at 8 p.m. IST. India will look to maintain their dominant run in the tournament. Harmanpreet Kaur's team won all three group matches, beating Thailand, Hong Kong and Pakistan convincingly. Bangladesh finished second in Group B behind Sri Lanka. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets philanthropist Prince Rahim Agha Khan V in New Delhi, discusses partnership in healthcare, rural development, youth and women's empowerment. WHO Chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus praises India's significant health gains in maternal and child care and non-communicable diseases. Brent crude oil prices continue to trade above $100 per barrel as Iran-US conflict intensifies. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Odisha today. And in cricket, India to take on Bangladesh in semi-final of Women's Asia Cup in Dubai this evening. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की।

0: निर्यात और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में जारी मजबूत कर जोर दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली वार्षिक मेलनों में से एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का सातवां संस्करण मुंबई में चल रहा है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है पोटेंशियल टू इम्पैक्ट, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय, आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन निलेकणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, VIP और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे

0: राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ और चुनावी साक्षरता क्लब ईएलसी के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
1: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्म भूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमिलगा वित्तीय कषगम टीवीके के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंतकम से मरगथम कुमारवेल को मैदान में उतारा है। विपक्षी डीएमके ने मधुरंतकम से पारंथमन और धरपुरम से एस सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निरीश्री।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर

एक अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनीता विलियम्स से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधुसिदार, सुप्रिया और रोशनी एंद्र ने दो दो गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये भारतवर्ष कितना सुंदर है ना, वो वादियां, वो पहाड़, वो फूल पत्ते, वो मिट्टी और उसकी महक, ये देश, ये लोग, वो प्रांत, वो भाषा, वो जौहर, वो जलवा, वो प्रसिद्ध अभिनेता, वो प्रसिद्ध खिलाड़ी, वो उच्च स्तरीय, एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि बस दुनिया कहने पर विवश हो जाती है कि भारतवर्ष इस पृथ्वी का सबसे अच्छा देश है। हम जैसे भी हैं हम एक हैं, हम जैसे भी हैं इस मिट्टी के बच्चे हैं, इस मिट्टी से हमें इतना लगाव है, इतना प्यार है जो शायद ही हम किसी और से करते हों। इस फिजा में, इस सबा में वो खुशबू है जिसकी बदौलत हम शान से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, और इसी आन बान और शान को दुरुस्त रखने के लिए सरहदों पर और इस भारतवर्ष के अंदर हमारी सेनाओं का प्रमुख रोल है। वो पैरा सर्विसेज हो, पैरा मिलिट्री फोर्सेज हो या आर्म्ड फोर्सेज हो, द पीपल इन यूनिफॉर्म प्रोटेक्ट आवर कंट्री। और आज हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में ऐसे ही एक जाबाज अफसर मौजूद है हमारे साथ, सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर, जो आज हमसे एसएसबी की गाथा, उसके गुण और अपनी उस शौर्य की गाथा शेयर करेंगे। क्योंकि एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, एक ऐसी फोर्स है जिस पर दायित्व है भारत की सुरक्षा का। आइए मिलकर स्वागत करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर का। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड इवनिंग। मैं सईद अफसर, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सबसे पहले मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक महोदय तथा आकाशवाणी FM रेनबो का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मंच पर उपस्थित होकर अपने सेवा अनुभव और अपनी यात्रा साझा करने का अवसर प्रदान किया। मेरे लिए यह अवसर एक इंटरव्यू नहीं बल्कि देश के श्रोताओं से सीधा संवाद करने और अपने अनुभवों के माध्यम से युवाओं तथा देशवासियों तक कर्तव्य, साहस और राष्ट्र सेवा का संदेश पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर के लिए मैं आकाशवाणी FM रेनबो और पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूं।
0: आपकी आवाज़ सुनकर मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में लोगों को बहुत ही उत्साह, एक गर्व महसूस किया गया होगा। आप पुलिस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं, और दो खास ऑपरेशंस जिनकी हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले आज इस प्रोग्राम में, और वो है पिथौरागढ़ और जमुई में जो दो ऑपरेशंस हुए, वो बड़े खास और इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस थे। मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़ुबानी उन ऑपरेशंस के बारे में बताएं।
1: जी बिल्कुल, मैं अभी जमुई में हुए ऑपरेशन के बारे में आपको कुछ प्रकाश डालूँगा। उस ऑपरेशन की पूरी जानकारी काफ़ी विस्तृत है और यह कई फेजेस में कंडक्ट किया गया था। 11 फरवरी 2021 मेरे सर्विस कैरियर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दिन था। हमें इंटेलिजेंस प्राप्त हुई थी कि लखीसराय जिले के जंगल क्षेत्र में नक्सलियों का एक सशस्त्र दस्ता देखा गया है और उनके लिए आस

आसपास के क्षेत्रों से भोजन सामग्री पहुंचाई गई है। प्राप्त सूचना को वेरीफाई करने के बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। हमने 10-11 फरवरी 2021 की मध्य रात्रि के दौरान अपना मूवमेंट शुरू किया। क्षेत्र की ज्योग्राफिकल कंडीशंस काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी, इसलिए ऑपरेशन में पेशेंस, एंडोरेंस और सतर्कता की विशेष आवश्यकता थी। ऑपरेशन के दौरान प्राप्त एक अन्य इनपुट के आधार पर परिस्थितियों के अनुरूप हमारी टीम ने अपनी योजना में आवश्यक बदलाव करते हुए आगे मूवमेंट किया। 11 फरवरी की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास हमारी टीम पर अचानक भारी मात्रा में फायरिंग शुरू हुई। हमने स्थिति का असेसमेंट करते हुए जवाबी कार्रवाई की। एंगेजमेंट का कुछ समय तक रुक रुक कर जारी रहा। इसके बाद एरिया की सिस्टमेटिक सर्च की गई। इस कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण नक्सली कैडर मनसा कोड़ा जोनल कमांडर को न्यूट्रलाइज किया गया तथा कुछ अन्य कैडर के घायल होने की जानकारी बाद में प्राप्त हुई। साथ ही साथ कुछ हथियार, गोला बारूद एवं अन्य सामग्री जब्त की गई। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे संतोषजनक और महत्वपूर्ण बात मेरे लिए यह रही कि हमारी पूरी टीम सुरक्षित रही और किसी भी साथी को कोई इंजरी नहीं हुई। मेरे विचार से यही किसी भी ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता होती है। मिशन को प्रभावी ढंग से पूरा करना और अपनी पूरी टीम को सुरक्षित वापस लाना। लेकिन मैं इस पूरी कार्रवाई को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं देखता, यह पूरी टीम का कलेक्टिव एफर्ट था। हर व्यक्ति ने, हर कार्मिक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और सभी ने एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखा। हमारे लिए ऑपरेशन की सफलता केवल ऑब्जेक्टिव हासिल करने में नहीं थी, हमारे हर साथी का सुरक्षित रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उस दिन पूरी टीम का डिसिप्लिन, म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमारी सबसे बड़ी ताकत रही।

0: तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आपने किया, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जब अचानक से फायरिंग शुरू होती है तो मन में पहला विचार क्या आता है? आपके मन में वो पहला विचार उस समय क्या आया जब एकदम से फायरिंग शुरू होगी? और खासतौर से मैं जानना चाहूंगा कि जो सिविलियंस होते हैं वो कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि एकदम से फायरिंग शुरू हो गई और जवाबी कार्रवाई हुई, तो जब एकदम से फायरिंग शुरू होती है तो मुझे जहां तक कॉम्बैट की नॉलेज है कि हम गोलियों के सामने नहीं आते, हम एक कवर लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स कवर लेने के बाद थोड़ा सा उस कवर के दौरान ही हम लोग एक समीक्षा करते हैं, एक ऑपरेशन हो रहा होता है, फायरिंग शुरू होगी, इसके लिए ट्रेनिंग हमें वाकई में पहले दी जाती है, पर फिर भी ट्रेनिंग और उस एक्चुअल मोमेंट में जब अचानक फायरिंग शुरू हुई तो आपके मन में पहला विचार क्या था?
1: जी बिल्कुल, उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सिचुएशन को जल्दी एसेस करना, एसेस किया जाए और टीम को कोऑर्डिनेटेड तरीके से रिस्पांस दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में ट्रेनिंग बहुत काम आती है, आपके पास सोचने के लिए बहुत कम समय होता है, इसलिए ट्रेनिंग के कारण रिस्पांस इंस्टिंक्ट और डिसिप्लिन्ड हो जाता है। उस समय मेरा फोकस था कि फ्रंटलाइन को एस्टेब्लिश किया जाए, कम्युनिकेशन क्लियर रहे और टीम एफेक्टिवली रिस्पॉन्स कर सके।
0: ओके, तो उस समय जब आप आगे बढ़ रहे थे तो आप क्या आपने एक क्षण के लिए भी कुछ विचार आया? उस समय होता है ना एकदम से फायरिंग शुरू हो गई, दिस इज द रियल एक्शन, अब क्या होगा आगे पता नहीं, लोग परिवार के बारे में सोचते हैं, तरह तरह की बातें आती हैं जहन में, कुछ होता है?
1: जी, खतरे की स्थिति में डर या तनाव एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है, लेकिन ऑपरेशनल ड्यूटी में ट्रेनिंग आपको

0: मैंने सुना तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सशस्त्र सीमा बल के फायर डिसिप्लिन का एक जो महत्व है वो लोगों को बताएं, और साथ ही साथ जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे थे, कितनी जल्दी आप लोग आपस में अपने साइन लैंग्वेज में ही बात करते होंगे शायद, एंड यू माइट नॉट बी काइंड ऑफ यू नो, एक वो भी एक महत्वपूर्ण एक अंश है कॉम्बैट का, लेकिन फायर डिसिप्लिन एंड ऑफ कोर्स उसके बाद उसका जो महत्व है वो थोड़ा बताएं।
1: जी बिल्कुल, ऑपरेशन में किसी भी ऑपरेशन को सक्सेस बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फायर डिसिप्लिन का होना, और कम्युनिकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने ये इंश्योर किया कि आरटी के माध्यम से जो भी ऑर्डर्स पास किए जा रहे थे उन्हें सभी सेक्शंस तक क्लियर और काम तरीके से रिले करना आवश्यक था। इंटेंस एंगेजमेंट के दौरान अगर कम्युनिकेशन में कन्फ्यूज़न हो जाए तो सिचुएशन और डिफ़िकल्ट हो सकती है, इसलिए मैंने कोशिश की कि ऑर्डर्स एक्यूरेटली और टाइमली तरीके से आगे पहुँचे और ट्रूप्स के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसी तरह फायर डिसिप्लिन भी बहुत महत्वपूर्ण था
0: जी।
1: हमारा उद्देश्य कंट्रोल्ड और इफेक्टिव रिस्पॉन्स देना था, ना कि केवल अधिक एम्युनिशन खर्च करना।
0: ऑलराइट, बेसिकली यू नो आप लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो पब्लिक तो होती नहीं, इसलिए ये प्रोग्राम जो है संदेश टू सोल्जर्स, जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं उसके माध्यम से हम सिविलियंस को कुछ थोड़ा बहुत पता लग जाता है कि किस तरह का डिसिप्लिन, हम लोग डिसिप्लिन एक वर्ड यूज़ करते हैं लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा फैलाव है, और डिसिप्लिन हमेशा रहने में मेरे ख्याल से इट डजेंट मीन कि आप हमेशा सीरियस हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए जैसे हम आकाशवाणी रेनबो में करते हैं थोड़ा सी गीत संगीत भी सुनते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी पसंद का एक गीत हमें चुनकर बताएं कि कौन सा गीत हम इस समय थोड़ा सा माहौल को थोड़ा सा और सॉफ्ट करने के लिए प्ले कर सकते हैं, और कौन सा गीत हो सकता है वो?
1: जी मैं चाहूँगा कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।
0: वो दिस अ ग्रेट सॉन्ग, पुरानी फिल्म का है।
1: जी जी बिल्कुल,
0: मतलब मैं पैदा नहीं हुआ था जब ये फिल्म रिलीज हो गई थी
1: जी,
0: और आपकी फिगर और आपकी स्मार्टनेस देखकर मेरे ख्याल से हमारे पैदा होने से पहले ये फिल्म बनी थी। इट्स अ ग्रेट सॉन्ग, किशोर कुमार लता मंगेशकर जी की आवाज में। इस गीत को सुनते हैं, उसके बाद मैं आपके से जानना चाहूंगा, आपके पास आऊंगा दोबारा, कि ये गीत आपको क्यों पसंद है, पन्ना की तमन्ना। लेट्स हियर इट आउट ऑन संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में। तो कुछ बताना चाहेंगे, पन्ना की तमन्ना बड़ा सॉलिड सॉन्ग है, एक बॉलीवुड से कुछ खास प्यार?
1: जी, मुझे किशोर कुमार जी के गाने सुनने अच्छे लगते हैं, और जब मैं स्टडी करता था कॉलेज टाइम पे, तो उस वक्त जो है मैं जब भी टाइम मिलता था तो फोकस होने के लिए मैं किशोर जी के गाने और अपने
0: मतलब एक अलग ही जादू है इनकी आवाज में, यू नो। खिलाड़ियों से हम बात करते हैं, वो किशोरदा के फैन है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो किशोरदा के फैन है, लता मंगेशकर जी के फैंस हैं, भले ही ये लोग फिजिकली हमारे साथ नहीं हो लेकिन इनकी आवाज सदियों तक रहेगी। और आई एम श्योर किशोरदा, लता जी की सोल, उनकी आत्मा जहां भी होगी बहुत गर्व महसूस करती होगी कि द मेन एंड वुमेन इन यूनिफॉर्म आज भी उनकी आवाज उनको इतना प्रेरित करती है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपके सैन्य जीवन के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, अभी नक्सल अफेक्टेड जो एरियाज हैं उनके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि जब हम उन अफेक्टेड एरियाज में जो ड्यूटी करते हैं तो उस समय जो पर्सनल होते हैं वो किस प्रकार विजिलेंट रहते हैं?
1: जी बिल्कुल। नक्सल अफेक्टेड एरियाज में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कभी भी कंप्लेसेंट ना हो। ऐसे एरियाज में ग्राउंड सिचुएशन लगातार बदल सकती है, इसीलिए इंटेलिजेंस इनपुट्स, ब्रीफिंग्स, लोकल सिचुएशन, रूट असेसमेंट और टीम कोऑर्डिनेशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारी ट्रेनिंग हमें यह सिखाती है कि रूटीन मूवमेंट को भी पूरी प्रोफेशनल अलर्टनेस के साथ किया जाए, लेकिन विजिलेंट केवल हथियार लेकर चौकन्ना रहने का नाम नहीं है। विजिलेंट का अर्थ है अपने सराउंडिंग्स को समझना, असामान्य गतिविधियों को पहचानना, कम्युनिकेशन बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत एप्रोप्रिएट डिसीजन लेना।
0: आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि हमारे साथ सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर मौजूद हैं, और एसएसबी की जहां तक हम बात करें तो ओरिजिनली इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1963 को, तब स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से इसे जाना जाता था, नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व ये इसका मोटो है, सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। और हमारे बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं और देश के अंदर जब भी कोई चुनौतीपूर्ण एक मौका आता है या वो क्षण आता है उसमें बिल्कुल सामने डटकर खड़े हो जाते हैं, उसका सामना करते हैं और विजयी होते हैं। चलिए हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़े से पन्ने जो हैं उनको घुमाते हैं, और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे यहाँ जब हम ये पन्ने थोड़ा सा पीछे मोड़ रहे हैं कि आपके प्रारंभिक जीवन के जो पल थे, जहाँ बचपन है, शिक्षा है, परिवार है, आपकी अपनी पर्सनालिटी, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मैं जमशेदपुर झारखंड का निवासी हूँ। मैंने अपने प्रारंभिक जीवन की बात करूँ तो मेरा बचपन एक सामान्य मध्यम वर्गीय पारिवारिक परिवेश में बीता है। मेरे परिवार ने बचपन से ही मुझे अनुशासन, ईमानदारी, मेहनत और बड़ों का सम्मान करने जैसे संस्कार दिए। मैंने रांची यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथमेटिक्स में स्नातक की शिक्षा पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ मुझे शारीरिक गतिविधियों, खेल और अनुशासित जीवन में रुचि थी। मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में मेरे माता पिता और परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। मैं मानता हूँ कि व्यक्ति की सफलता केवल उसकी अपनी मेहनत का परिणाम नहीं होती, उसके पीछे परिवार के संस्कार, शिक्षकों का मार्गदर्शन और जीवन में मिले अनुभवों का बहुत बड़ा योगदान होता है।
0: एसएसबी में जब आपके भर्ती होने की जब बारी आई तो आपको ये एसएसबी में ही, सशस्त्र सीमा बल में ही आने के लिए प्रेरणा आपको कहां से मिली? और साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगा कि आपने जब SSB ज्वाइन किया तो उसकी भर्ती की जो प्रक्रिया थी वो कैसी रही?
1: जी बिल्कुल, मेरे लिए प्रेरणा का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मेरे पिता रहे हैं। वे इंडियन रेलवेज में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, साथ ही टेरिटोरियल आर्मी में थे। बचपन में जब मैं उन्हें वर्दी में देखता था तो उन्हें वर्दी में देखकर मेरे अंदर भी देश के लिए कुछ करने का जोश और जुनून पैदा होता था। शायद वहीं से मेरे मन में यह भावना विकसित हुई कि भविष्य में मुझे भी ऐसी वर्दी पहनकर राष्ट्र की सेवा करनी है। इसी भावना को व्यक्त करने वाला अंग्रेजी का एक कोट जो मुझे प्रेरित करता है वो मैं कहना चाहूँगा। द यूनिफॉर्म इज नॉट मेयरली वॉट यू वेयर, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैरी, द वैल्यूज यू अपहोल्ड एंड द नेशन यू सर्व। मेरे लिए वर्दी केवल

0: पहनावा नहीं है, यह उस जिम्मेदारी, अनुशासन और समर्पण की पहचान है जिसे पहनने वाला व्यक्ति अपने कंधों पर लेकर चलता है।
1: तो दोस्तों, आप सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर की आवाज सुन रहे हैं। हमने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे उनकी ही जुबानी कि SSB ज्वाइन करने से पहले और उसके बाद उनके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं।
0: जी, परिवार के लिए यह गर्व का विषय था, लेकिन स्वाभाविक रूप से थोड़ी चिंता भी थी। यूनिफॉर्म सर्विस में पोस्टिंग्स अलग अलग राज्यों और कई बार कठिन तथा संवेदनशील क्षेत्रों में होती है, इसलिए परिवार को पता था कि आगे का जीवन आसान नहीं होगा। लेकिन मेरे परिवार ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया और उसके बाद अलग अलग लोकेशंस पर मेरी पोस्टिंग हुई, तो धीरे धीरे उन्हें भी इस प्रोफेशन की चुनौतियों की समझ हुई। और जब मुझे पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया, तो वह मेरे परिवार के लिए अत्यंत भावुक और गर्व का क्षण था।
1: आपने अपने गैलेंट्री अवार्ड की बात की, तो मेरे ख्याल से ये जो ऑपरेशंस आपने किए जिसके लिए ये सम्मान आपको दिया गया, गैलेंट्री अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है ना, तो इसकी जो उपलब्धि थी, इसके महत्व के बारे में तो हम लोग जानेंगे, लेकिन आपके लिए वो क्षण कैसा था जब आपको पता लगा कि आपको इस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, और खास तौर से जब एक ऐसी फोर्स के बारे में हम बात करते हैं जिसे 2001 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ट्रांसफर कर दिया गया था, और जो नेपाल और भूटान के बॉर्डर्स पे जो मैनिंग की जो ड्यूटीज थी, उसके बाद एक और दायित्व दिया गया इन्हें, क्योंकि जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास कारगिल युद्ध के बाद, तो एक अडॉप्शन जो कहते हैं कि वन बॉर्डर वन फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया। और बॉर्डर एरिया हो, या मैंने जैसे आपने कहा, आप भी बता रहे हैं और मैं भी बता रहा हूँ अपने श्रोताओं को, कि देश के अंदर जो गतिविधियाँ चलती हैं, जहाँ पर भी कोई चैलेंजिंग मोमेंट आता है, उसको उसका सामना करने के लिए, उसके सामने खड़े होने के लिए सशस्त्र सीमा बल हमेशा तैयार रहती है। और वहीं से गैलेंट्री अवार्ड के लिए ये सम्मान अनाउंस होना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। जब ये अनाउंस हुआ और आपको पहली बार पता लगा, तो आपके वो क्षण कैसे थे?
0: जी, यह मेरे लिए बहुत गर्व और भावनात्मक क्षण था। सबसे पहले मेरे मन में अपने सीनियर्स, अपने साथी कार्मिक और अपने परिवार के प्रति आभार आया, क्योंकि जिस ऑपरेशन के लिए मुझे यह सम्मान मिला, उसमें मैं अकेला नहीं था। पूरी टीम ने कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारी निभाई, इसलिए मैं इस मेडल को पूरी टीम के साहस, प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन का सम्मान मानता हूँ।
1: ये जो गैलेंट्री अवार्ड की हम बात कर रहे हैं, तो असिस्टेंट कमांडर सैयद अफसर से मैं पूछना चाहूँगा कि ये मेडल मिलने के बाद आपकी सोच में भी कोई बदलाव आया?
0: जी, बताना चाहूँगा, सम्मान मिलने के बाद मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। मेडल मेरे लिए यह रिमाइंडर है कि मुझे आगे भी अपने प्रोफेशन में उसी डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म को बनाए रखना है। मैं इसे उपलब्धि का अंत नहीं, बल्कि आगे बेहतर करने की प्रेरणा मानता हूँ।
1: और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा अर्थ है गैलेंट्री मेडल का।
0: जी बिल्कुल।
1: राइट देन, जब गैलेंट्री अवार्ड मेडल मिलता है, सैयद अफसर मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो मेडल की जब खबर आती है, तो उस दिन रात को नींद कैसे आती है और अगली सुबह वो भाव कैसे होते हैं? गौरव का क्षण होता है?
0: बिल्कुल, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए जो ऑपरेशन में उस दिन डटकर खड़े थे साथ, और उन सभी मेहनत और ट्रेनिंग के दिनों के लिए जो हमने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए किया था।
1: उस दिन जब ये खबर आपके पास आई।

0: शायद कोई ऐसा मोमेंट भी होगा जहां आप अकेले होंगे, कोई नहीं होगा आसपास कुछ देर के लिए, उस समय नहीं तो उसके थोड़ी देर बाद, आप और सिर्फ आप, जहां आप अपनी आत्मा से बात कर रहे होंगे। कुछ ऐसा मोमेंट था, कुछ शेयर करना चाहेंगे?
1: जो बिल्कुल, जब हम ऑपरेशंस करते हैं तो उस वक्त हमारे दिमाग में मेडल्स ये सब नहीं होता, बट जब आपके किसी अच्छे काम को रिकग्निशन मिलता है तो बिल्कुल बहुत खुशी होती है, और वो भावुक क्षण था मेरे लिए।
0: एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जिसके बारे में मैंने आपसे नहीं बताया, और मैं नहीं बताता किसी को कि ये सवाल मैं शो में पूछूंगा आपसे, और ये सवाल मैंने भारत के टॉप स्पोर्ट्स पर्सन से पूछा है, देश के जाबाज सिपाहियों से पूछा है, अफसरों से पूछा है, सोल्जर से पूछा है, इसलिए ये सवाल मैं अब आपके आंखों में देखकर ये पूछना चाहता हूं। सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर, ये तिरंगा आपके लिए क्या मायने रखता है, जिसकी आन बान शान के नीचे आप अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं?
1: जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया, तिरंगा हमारी आन बान और शान है, और इसी के लिए हम अपनी जान निछोर कर सकते हैं, इसी के हमेशा ऊंचा रहने के लिए हम अपनी सब कुछ निछोर कर देते हैं, और
0: भावुक क्षण है। सवाल उतना आसान नहीं है ना, ये तिरंगा कभी कभी वो भाव निकाल ही लाता है हमारे अंदर से, है ना। अच्छा मुझे ये बताइए, आप देश की सेवा कर रहे हैं और आपका परिवार भी है, और उसके बीच में एक कहते हैं ना, एक संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, कि फैमिली की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फैमिली कहती है कि भाई हमारी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फ़ोन आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे, ये थोड़ा सा जो आपकी डिसिप्लिन लाइफ है उससे सिविलियन लाइफ थोड़ी सी अलग होती है, तो आप देश सेवा और परिवार के बीच में जो संतुलन है वो कैसे बनाए रखते हैं?
1: जी ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, यह निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। हमारी पोस्टिंग्स और ड्यूटीज़ के कारण कई बार परिवार से दूर रहना पड़ता है, और जो इम्पोर्टेंट ओकेजन्स होते हैं जो हमारे परिवार के, वो भी कई कबार मिस हो जाते हैं। ऐसे में परिवार का अंडरस्टैंडिंग रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब भी समय मिलता है मैं परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताता हूँ और कम्युनिकेशन बनाए रखता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि जब एक सोल्जर देश की सेवा करता है तो उसके साथ उसका परिवार भी सैक्रिफाइस करता है।
0: देखो परिवार का योगदान तो बहुत रहता है, एंड ऑफकोर्स जब हम बात करते हैं परिवार के संतुलन के बारे में, उनका सपोर्ट, उसके बगैर तो कोई बैलेंस बन ही नहीं सकता लाइफ में। और हम आकाशवाणी में एक बैलेंस बना के रखते हैं अपने लिसनर्स के साथ, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी श्रोता इस समय संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं, न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से देश और विदेश में भी हमें सुना जा रहा है, हम इस बात से परिचित हैं, तो अगर आप कोई व्हाट्सएप मैसेज करना चाहें तो एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर आप व्हाट्सएप से अपने भाव, अपने प्रतिक्रिया, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सईद अफसर जी से तो वो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 9868107070 9868107070। हाँ, लग ही नहीं रहा कि किसी अजनबी से मुलाकात हो रही है, और समय हो गया है कि एक और गीत सुने, तो कौन सा गीत आप प्ले करना चाहेंगे? किशोरदा के तो आप फैन हैं
1: जी। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई।
0: अरे इसके अंदर तो बहुत राज छुपे हैं असिस्टेंट कमांडेंट साहब, जरूर इसके पीछे बहुत बड़ा कोई रीजन है, तो ये गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश किशोरदा की आवाज में फिल्म अजनबी से।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ यहाँ असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर मौजूद हैं, सशस्त्र सीमा बल जो हमारी फोर्स है उसको बहुत सारी शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए भी आकाशवाणी की तरफ से, और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं जिनसे थोड़ा सा परिचित होंगे थोड़ी देर में। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि सशस्त्र सीमा बल में जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो कैसी रहती है और आपके लिए कैसी थी।
1: जी मैंने एसएसबी वर्ष 2012 में बतौर उपनिरीक्षक के पद पर ज्वाइन किया एवं अपनी सेवा यात्रा शुरू की। भर्ती की प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा, मेडिकल परीक्षण, इंटरव्यू तथा अन्य निर्धारित चयन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। सेलेक्शन और ज्वाइनिंग के दौरान मेरे लिए यह एक नया अनुभव था। एक यूनिफॉर्म फोर्स में आने के लिए फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल प्रिपेयर्डनेस, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की भी आवश्यकता होती है। ज्वाइनिंग के बाद मेरा पहला महत्वपूर्ण चरण सलोनीबाड़ी असम में सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक ट्रेनिंग का रहा। ट्रेनिंग के दौरान मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अब जीवन की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। अब केवल व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन और देश के प्रति जिम्मेदारी भी थी। वर्ष 2023 में मैंने विभागीय लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दैट इज LDCE उत्तीर्ण कर असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी के पद पर पदोन्नति प्राप्त की। वर्तमान में मैं सशस्त्र सीमा बल 24वीं वाहिनी रंगिया असम में बतौर सहायक कमांडेंट अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं।
0: तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट तक का जो आपका सफर है वो कैसा रहा। और इससे पहले कि आप उत्तर दें, मैं कुछ मैसेजेस भी पढ़ लेता हूं जो हमारे पास आ रहे हैं देश भर से। और सबसे पहले ये मैसेज जिनका आया है वो है यश शिंदे, मुंबई से लिख रहे हैं, और प्रोग्राम के बारे में उनकी प्रतिक्रिया ये है कि उन्हें ये प्रोग्राम, आपकी आवाज़ और आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। शांताचारा बदीगर कोकानूर देवनागरी से संदेश टू सोल्जर्स की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि वो याद दिलाते हैं ये प्रोग्राम की सर्विस सैक्रिफाइस ड्यूटी हमारे ब्रेव सोल्जर्स की, जो हमारे इस भारतवर्ष को गार्ड कर रहे हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है। और प्रभावित होते होते बी के दत्त हमें नई दिल्ली से मैसेज लिख रहे हैं, अनमोल राय छपरा बिहार से हमें मैसेज लिख बैठे हैं, और आकाशवाणी का धन्यवाद दे रहे हैं चेतन पटेरिया ग्वालियर से, राजकुमार संतानी एक मैसेज लिख रहे हैं, मोहन चंद्र जोशी ने अपना एक मैसेज हमारे तक पहुंचाया है, और एक और मैसेज हमारे पास आया है जो मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पर। सैयद सर के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, हमें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, और स्वर रोड मुरसेना डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी से मैसेज आया है, और गुलाफशा इदरीसी जीनत और नाजिया शाजिया के साथ ये मैसेज हम तक पहुंचा है। कोकानूर से भी एक मैसेज आया है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम में वार्ता सुनकर हमें लग रहा है कि SSB कितना महत्वपूर्ण और बड़ा काम कर रही है। अमेरिका से एक मैसेज आ गया हमारे पास, एंड ऑफ कोर्स वो कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। नाम लिखा नहीं है तो हम नाम ले नहीं पाएंगे। सूरज कुमार शेखुपुरा बिहार से हमें मैसेज लिख रहे हैं, SSB को सैल्यूट दे रहे हैं, SSB कमांडेंट साहब को संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम का नियमित श्रोता। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से विजय कुमार विश्वनाथन का प्रणाम, बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं आपकी गैलेंट्री अवार्ड के लिए। सैनिकों का जज्बा जो है उनकी शौर्य गाथा पर ये केंद्रित प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। संतोष श्रीवास्तव को पसंद आ रहा है जो प्रयागराज ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में प्रोग्राम्स करते हैं। सुरेश कुमार 68 बटालियन SSB मणिपुर LNO ड्यूटी कर रहे हैं सर, और LNO ड्यूटी के लिए कुछ टिप्स बताइए, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या। ASI सुरेश कुमार आपसे परिचित है, SSB के ही हैं
1: जी बिल्कुल,
0: तो वो कह रहे हैं कुछ टिप्स बताइए LNO।
1: LNO बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी होता है.
0: Okay.
1: आप जानते हैं मणिपुर की सिचुएशन थोड़ी सी मतलब गड़बड़ाई हुई है और वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस जो रेगुलर फोर्सेस वहाँ तैनात है उसके अलावा अभी वहाँ पे तैनात की गई है ताकि सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सके. मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपको जो ड्यूटी आपकी कंपनी कमांडर के द्वारा या जो एडहॉक कमांडेंट आपके हैं वहाँ पे उसके द्वारा लगाई गई है या अभी हमारे 68 बटालियन वहाँ पे बेसिकली उनका KLP वहाँ पे रिलोकेट हो गया है तो अभी 68 बटालियन की लगभग सभी वाहिनियाँ मणिपुर में हैं. मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो आपको ड्यूटी दी जाती है उस ड्यूटी को आप बहुत ही सतर्कता के साथ में और विजिलेंट होकर के करें और किसी भी अनटूवर्ड स्थिति के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें और साथ ही साथ स्थिति को समझें और सिचुएशन की डिमांड को देखते हुए एक्शन लें और जो आपके सीनियर हैं जो आपके जस्ट सीनियर हैं जो आपके सुपीरियर हैं उनके जो ऑर्डर्स प्रॉपर फॉलो करें और जो ट्रेनिंग में आपने सीखा है उस ट्रेनिंग को वहाँ पे जो है पूरी तरीके से उतारें और आपकी अपने आप ही जो ड्यूटी है वो परफेक्ट हो जाएगी.
0: वाह, बहुत अच्छे विचार आपने शेयर किए यहाँ पे और बहुत सारे लोग हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं. मानसी महास्कर अंधेरी मुंबई से उनमें से एक है.

और आपको दिल से वो बधाइयाँ दे रही हैं, कह रही हैं कि आज के मेहमान अफसर सर और सब दलों के फौजी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, और मैं हमेशा सुनती हूँ प्रोग्राम, एंड ऑफ कोर्स वो अपने भाव भले ही व्हाट्सएप के जरिए चार लाइनों में ही व्यक्त कर रही हूँ, लेकिन इन चार लाइनों के पीछे ढेर सारा प्रेम हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, एंड ऑफ कोर्स फॉर द ग्रेट नेशन दैट वी लिव इन।

0: तो हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, एंड ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें. तो सबसे पहले उसी सवाल को मैं दोहरा रहा हूँ असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर की, सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट तक का जो आपका सफ़र था वो कैसा था?
1: जी, यह सफ़र मेरे लिए निरंतर लर्निंग्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सफ़र रहा है. मैंने SSB में अपने कैरियर की शुरुआत सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री के रूप में की और आज असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में जिम्मेदारी निभा रहा हूँ. समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्वरूप बदलता गया. एक जूनियर रैंक्स में आपका फोकस मुख्य रूप से अपनी असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रोफेशनली पूरा करने पर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको अपने साथ काम करने वाले कार्मिकों की सेफ्टी, उनका मोराल, डिसिप्लिन और ऑपरेशनल एफेक्टिवनेस की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है. इस सफ़र ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई. लीडरशिप का अर्थ केवल आगे रहना नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर अपनी टीम के लिए आगे खड़ा होना भी लीडरशिप है.
0: सशस्त्र सीमा बल, जितनी भी तारीफ हम करें शायद शब्द कम पड़ जाएं. जानते हैं कि साल 2013 में सशस्त्र सीमा बल पर एक पोस्टल स्टैंप इशू किया गया था और वहां पे भारत की वो सरहद जहां पर बर्फीली चट्टानों के बीच में हमारे जाबाज सैनिक सुरक्षा का वो दायित्व संभालते हैं, एक कवच पहनते हैं, भारत मां का दिया हुआ वो कवच उस यूनिफॉर्म के रूप में. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, हर प्रांत, हर जगह में सशस्त्र सीमा बल लगभग हर जगह अपनी सेवाएं हमें देती हैं. और इस सशस्त्र सीमा बल में लीडर्स भी बहुत अच्छे हैं. तो यहां हमारे साथ स्टूडियो में जो बैठे हैं असिस्टेंट कमांडर सईद अफसर, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके अनुसार एक अच्छा लीडर कौन होता है.
1: जी बिल्कुल, लीडर्स की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है. जो मेरे लिए है मैं बताना चाहूँगा. मेरे विचार से अच्छा लीडर वह होता है जो अपनी टीम को केवल आदेश ना दे बल्कि उन्हें समझे. एक लीडर को अपने कार्मिकों की कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशंस दोनों को समझना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, लीडर को अपने एक्शन से एग्जाम्पल सेट करना चाहिए. अगर आप अपनी टीम से कमिटमेंट की अपेक्षा करते हैं तो आपको भी उतना ही कमिटेड होना चाहिए.
0: वाह, और बहुत कम समय बचा है, लगभग हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, तो अपने श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर है जो मैं आपको दोबारा शेयर कर रहा हूँ, आप अपने

0: संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर है 9868107070, 9868107070। असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ और मैं आपसे बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा चीज़ों को हमने बहुत सीरियसली लिया, लेकिन हमारे देश के युवा भी हैं जो शायद कोई मार्गदर्शन चाह रहे हों। अगर उन युवाओं के लिए मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी ज़ुबानी, सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर की ज़ुबानी अगर कोई मैसेज उन यंग लोगों तक पहुँचाया जाए तो क्या होगा?
1: जी बिल्कुल, मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपने कैरियर का चुनाव केवल सैलरी या स्टेटस के आधार पर ना करें। ऐसा प्रोफेशन चुनें जिसमें आपकी रुचि हो और जिसमें आप समाज और देश के लिए मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकें। अगर कोई युवा यूनिफॉर्म सर्विस में आना चाहता है तो उसे फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और प्रिजर्वेंस पर भी काम करना चाहिए। फेलियर्स आए तो उनसे सीखें, लेकिन अपने लक्ष्य को ना छोड़ें।
0: आज से अगर 14 साल पहले थोड़ा पीछे जाएं, साल 2012 में, तो 2012 के सईद अफसर और आज के अफसर जो हमारे सईद अफसर साहब हैं, उनसे अगर वो दोनों पर्सनालिटी मिलें तो 2026 के सईद अफसर 2012 के सईद अफसर से क्या कहेंगे? कुछ ऐसे ही भाव जो आपने युवाओं के लिए कहे?
1: जी बिल्कुल, मैं 2012 के सईद अफसर से कहना चाहूँगा कि अपनी मेहनत और अपने उद्देश्य पर विश्वास बनाए रखो। आगे रास्ते में कई चैलेंजेस आएंगे, कई बार परिवार से दूर रहना पड़ेगा और कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स और अपने ड्यूटी से कंप्रोमाइज मत करना। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सफलता का श्रेय अकेले खुद को मत देना। जिन लोगों ने आपके सफर में आपका साथ दिया है उन्हें हमेशा याद रखना।
0: और आकाशवाणी ने भी तो आपका बहुत साथ दिया है। मेरे ख्याल से आपकी फोर्स में बहुत सारे लोग जो बहुत डिफिकल्ट टेरेन में होंगे, क्या मतलब पहले तो बहुत सारे लोग खुले तरीके से आकाशवाणी को चला के रेडियो सुनते थे, आपका आकाशवाणी के साथ वो रिलेशन और जो आपके जो आपके बटालियन हो या आपके ग्रुप के जो लोग हैं आकाशवाणी के प्रति, उनका भी एक भाव होगा, जुड़ाव होगा, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। देश की सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात फोर्सेस की जिम्मेदारी नहीं है, राष्ट्र निर्माण में हर नागरिक की अपनी भूमिका है। मैं विशेष रूप से युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और हार्डवर्क को महत्व दें। जो युवा यूनिफॉर्म फोर्सेस में आने का सपना देखते हैं वे पूरे समर्पण के साथ तैयारी करें और कठिनाइयों से कभी ना घबराएं। मेरे लिए राष्ट्र सेवा केवल एक प्रोफेशन नहीं है बल्कि एक कमिटमेंट है, और पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मेरे लिए उस कमिटमेंट को और मजबूत करने की प्रेरणा है।
0: संदेश टू सोल्जर्स में समय निकलता जा रहा है बहुत ही जल्द, हमें इस प्रोग्राम का आज समापन करना पड़ेगा, लेकिन चलते चलते वो लोग जो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं व्हाट्सएप जिनसे मैंने मंगाया है, उनके नाम मैं अपने ही अंदाज में लेना चाहूँगा। मंसूर अली बीकानेर से हमारे को मैसेज भेज रहे हैं, साथ ही साथ SHQ बोंगाईगांव CTGD पार्था बर्मन, शायद ये भी SSB से ही हैं, इन्होंने हमें मैसेज भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया ये मैसेज भेजने के लिए। जय हिंद सर, नाम अपना नहीं लिखा। हाँ, सौरभ कुमार हमें मैसेज भेज बैठे हैं, 16वीं बाहिनी SSB से स्वागत, बंदन अभिनंदन संचार शाखा से, ये आपके लिए मैसेज आया है। एंड ऑफकोर्स सौरभ हिमाचल प्रदेश से हमें मैसेज भेज चुके हैं, जय हिंद कहते हुए वो कह रहे हैं कि एक नए योद्धा हैं 73rd वाहिनी सशस्त्र सीमा बल सेंथुक में, नहीं टाटा योद्धा के आगमन के अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना का आयोजन किया है, सर को बता दीजिए। जय हिंद सर।

0: बहुत कम समय बच गया है, हमें ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो पे आए, अपने भाव शेयर किए, और वो गैलेंट्री अवार्ड मेडल मैं देख पा रहा हूँ और मेरे अंदर बहुत ही इमोशन आ रहा है जो मैं व्यक्त नहीं कर सकता, और उन मेडल्स को देख के मैं यही कह सकता हूँ दैट आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: थैंक यू सो मच।
0: और यहीं पे हम संदेश टू सोल्जर्स से आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। आशा करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: तारकोल की एक सड़क पर दो साए हैं, अंधेरे की नाजायज औलाद है शायद, घूंट घूंट खून पी कर दोनों पले हैं शायद। पातले जमीन है न सर पे आसमान है, जिंदगी कुचल गई ये उनकी दास्तान है।

हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ आज स्वेच्छा और आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। समय हो रहा है 5:08 और प्रोग्राम है लव यू जिंदगी। आप सभी का आज के प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। तो आज लव यू जिंदगी में बस कुछ यूं ही ऐसे ही रैंडम बातें करेंगे जिन्हें हम खुद देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं खुद में, अपनी फैमिली के साथ या कभी अपने फ्रेंड्स के साथ या कभी किसी स्ट्रेंजर को देख के, है ना। तो आज के टॉपिक्स में कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं ना कि सारी बातें जो हैं वो या हर कॉन्वर्स

0: कन्वर्सेशन किसी सीख के साथ ही पूरी हो। कभी कभी ना सिर्फ हंसना, कुछ बातें कर लेना, अच्छा म्यूजिक सुनना, यही काफ़ी है। तो आज टॉपिक है नो टॉपिक। अच्छा तो एक बात बताइए, क्या सिर्फ ऐसा मेरे साथ होता है? वैसे मुझे लगता है कि ज़्यादातर सभी के साथ होता होगा कि घर से निकलते वक्त हमें लगता है बड़ा पॉजिटिव फील होता है, बड़ा अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंट फील होता है, बट हम कभी जब बाहर निकलते हैं तो कई बार हमें किसी के बिहेवियर से या किसी के वजह से ऐसा एकदम से जो हम कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं वो एकदम से हमारा जो इमोशन है वो चेंज हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, जब कॉन्फिडेंट की बात आज चल ही रही है और आपको यदि ऐसा कुछ फील हो रहा है तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि चाहे कुछ भी हो लेकिन आपको यदि अच्छा फील हो रहा है ये इनफ है। तो इसीलिए कोई भी कुछ भी कहे या किसी भी तरह से आपको देखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, कॉन्फिडेंस को वापस ले आते हैं। वैसे कॉन्फिडेंस की बात निकली है तो आज आप अपने बारे में एक अच्छी बात सोचिए और उस अच्छी बात से आपको अपने आप पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट फील होने लगेगा। तो चलिए पहले हम लेते एक ब्रेक, उसके बाद सुनते एक गाना। बने रहिए हमारे साथ 107.1 FM रेनबो पर।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
2: जी, म्यूजिकली योर्स 107.1 FM रेनबो. मैं हूँ आरजे स्वेच्छा आपके साथ. और अभी हमने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में मुस्कुराने की वजह तुम हो, बहुत ही खूबसूरत गाना है. बात आज चल रही है ऐसे टॉपिक्स पे जिनका कोई कंक्लूजन नहीं है, बस हम बात करेंगे और आप सोचिए कि आप उनको अपनी लाइफ में कैसे अपने ऊपर लागू कर सकते हैं और कैसे उनको किसी भी बात से सीख के अच्छा महसूस कर सकते हैं, खुद की लाइफ आसान कर सकते हैं. अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको अभी अचानक छुट्टी मिल जाए तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे लोग एकदम सोच रहे होंगे कि क्या करेंगे. बहुत सारे ऑप्शंस हैं वैसे आपके पास. क्या आप कहीं घूमने जाएंगे या किसी दोस्त को फ़ोन करेंगे जिसको आपने शायद महीनों से ना किया हो, कोई मूवी देखेंगे जो बहुत टाइम से सोच रखी हो, या फिर 2-3 घंटे बैठकर यही सोचेंगे कि मैं क्या करूं. देखिए, सोचने का तो कोई एंड नहीं है, हम चाहे कितना भी वक्त उसमें ज़ाया कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ना फ्री टाइम मिलने के बाद भी हमारा ब्रेन जो है वो लोडिंग पर अटक जाता है. इतना

ज़्यादा एक दिन के हिसाब से हम प्लान कर लेते हैं, जो हो नहीं सकता, जो हम सिर्फ सोच सकते हैं, उसको हम पूरा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और हम ना बस वो दिन भी ये सोच कर ही वेस्ट कर देते हैं कि हम क्या करें, क्या नहीं करें, क्या करना चाहिए, और इसकी वजह से ना कोई काम हो पाता है और ना ही कुछ हो पाता है, बस सोचते ही रह जाते हैं। तो आप अपना आंसर सोचिए, आप ये बात सोचिए कि अभी तो थर्सडे है, नेक्स्ट सैटरडे आने वाला है, संडे आने वाला है, तो ये वीकेंड पे आपको क्या प्लान करना है, ताकि उस वक्त सोचने में आपका समय बर्बाद ना हो और आप अच्छे से कोई प्लान बना पाएं। या यदि आपको रेस्ट भी करना हो, किसी से बात करनी हो, कहीं बाहर आउटिंग का प्लान, कुछ कुछ भी बनाना हो, तो वो आप बेहतर तरीके से उसको सोच पाएं। तब तक आप सोचिए, और तब तक मैं सोचती हूँ आपको एक बढ़िया सा गाना सुनाने का। एक्चुअली मैंने सोच लिया है कि नेक्स्ट हम क्या सुनने वाले हैं, तो आप इंजॉय कीजिए ये गाना और बने रहिए हमारे साथ 107.1 FM रेनबो पर।

समय हो रहा है 5:36 और प्रोग्राम चल रहा है लव यू जिंदगी। जी हाँ, आज के टॉपिक और गानों को लेके काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं धीरे धीरे सभी का रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। साथ ही साथ एक बड़ी कॉमन सी समस्या है जो मैं घर में भी देखती हूँ, लोकल में भी देखती हूँ, आते जाते हर जगह देखती हूँ कि एक बड़ी कॉमन बहस है कि हेडफोन्स में गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं या स्पीकर पर। कुछ लोग हेडफोन्स में ना अपना पूरा पर्सनल कॉन्सर्ट चला रहे होते हैं, कितना भी वॉल्यूम कर सकते हैं, कोई भी गाना सुन सकते हैं, खुद के लिए इंजॉय कर सकते हैं, और स्पीकर पे लगता है कि पूरा मोहल्ला जो है आपके साथ म्यूज़िक इंजॉय कर रहा है। कई लोगों को वैसे पसंद भी नहीं होता, पर कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। और अगर गाना बहुत अच्छा हो तो वॉल्यूम तो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। तो इसी बात पे क्या पसंद है, तो आप इस बात पे सोचिए आपको क्या पसंद है। आपको पर्सनल कॉन्सर्ट अपना पसंद है अपने हेडफोन्स में या ईयरफोन में या कैसे भी गाने सुनना, या फिर बिना हेडफोन्स के स्पीकर में खुद को तो सुनते ही हैं और बाकी सबको भी सुनाना। तो आपको क्या पसंद है, आप ये हमें ज़रूर बताइए मैसेज करके। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। आप मैसेज करके अपनी बात हमें बता सकते हैं और मैं आपके आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मुझे लगता है फ़िलहाल हमको ये बहस छोड़ के अपना खुद का कॉन्सर्ट एंजॉय करना चाहिए FM रेनबो का, जो अभी चल रहा है। तो मैं जब तक आपको सुनाती हूँ नेक्स्ट

समय हो रहा है 6:01 और लव यू जिंदगी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है और इसी के साथ हम लव यू जिंदगी को बाय बाय कहने का समय आ रहा है। और आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें सोची, काफ़ी सवाल जो हैं हमने किए, पर एक बात बताऊं तो आज ना कोई बड़ा मुद्दा ना था और ना ही कोई बात सॉल्व हुई, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमें कोई ऐसी बात आज हम नहीं कर रहे हैं जो कंक्लूजन जिसका निकले, जिसका हमेशा एंड पॉइंट निकले या बात ख़त्म ही हो। अच्छा, तो आज इतनी सारी बातें हुई, उसके साथ ही साथ हो सकता है कि कई चीज़ों पे हम साथ में एग्री ना करें, पर एक चीज़ हमेशा है जिस पे हम सब एग्री करेंगे, जिसको हम सब मानते हैं कि एक अच्छा म्यूज़िक हो तो शाम थोड़ी और अच्छी लगने लगती है। और आप बस उसी के साथ लव यू ज़िंदगी को समेटते हैं। और आप सभी के मैसेजेस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। किसी को प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई, कई लोगों ने गुड इवनिंग बोला, आप सभी को गुड इवनिंग पहले तो, और सबको प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, आप सब हमारे साथ बने हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सब ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाती रहिए, हमारी बातें करते रहिए, हमसे बातें करते रहिए, हमें जवाब देते रहिए और म्यूज़िक सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ 107.1 FM रेनबो पर। अब से ठीक

6:05 पर हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और उसके बाद शुरू होगा हमारा अंदाज़े बयां। लव यू जिंदगी के लिए बस थोड़ी देर के लिए टाटा बाय बाय, और समाचार के बाद मिलते हैं, समाचार के उस पार मिलते हैं अंदाज़े बयां में। और वैसे मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि आज हम जो बातें कर रहे थे उसमें जब हमने हेडफोन को लेके बातें की या लाइक किसी भी चीज़ को लेके हम बातें जो कर रहे थे, छुट्टी मिलना सोचना, तो ये ना आम जिंदगी में हम बहुत करते हैं। हम हर चीज़ को बहुत सोचते हैं, अपने आप को बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करवाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो इस सब को कोशिश कीजिए, आप खुद में थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, भरोसा रखिए और बस हंसते रहिए, अपना ध्यान रखिए। और हम मिलते हैं न्यूज़ के बाद अंदाज़े बयां में, तब तक के लिए आप सुनते रहिए समाचार और बने रहिए हमारे साथ 107.1 FM रेनबो पर।

जी समय हो रहा है 6:22 और प्रोग्राम है अंदाज़े बयां। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे स्वेच्छा और आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स। अंदाज़े बयां शुरू हुआ है। शाम का ये वक्त ना अपने आप में कुछ कहता है। दिन की रफ्तार थोड़ी कम होती है, खिड़कियों से आती हवा कुछ गाने, कुछ पुराने किस्से याद दिलाती हैं, और दिल करता है कि बस थोड़ी देर दुनिया को किनारे रखकर कुछ और सुना जाए। तो आज की शाम हम करेंगे कुछ अल्फाजों के नाम, कुछ एहसासों के नाम और उन नगमों के नाम जो दिल तक पहुंचने का हुनर रखते हैं, जैसे कि ये आशा भोसले जी की आवाज़ में सलोना सा सजन है, बेहद खूबसूरत गज़ल है। और इसके साथ एक बात कहना चाहूँगी, कहते हैं ना कुछ बातें लफ्ज़ों से नहीं बस खामोशी से समझ आती हैं, कुछ शामें वजह से नहीं बस किसी की याद से खूबसूरत हो जाती है। तो आइए इस शायराना शाम का एक और नगमा सुनते हैं और उसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो म्यूजिक।

0: यादें भी, यादें भी कितनी अजीब होती हैं। वक्त बीत जाता है मगर उनका मौसम वही ठहरा रहता है। अब जब शाम इतनी खूबसूरत हो ही गई है तो जरा सी मोहब्बत की बात हो जाए। मोहब्बत का मतलब हमेशा किसी एक इंसान से होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हम किसी भी चीज़ से मोहब्बत कर सकते हैं, किसी भी इंसान से, अपने रिश्तों से, अपने काम से, कभी कभी तो किसी शहर से, कभी किसी आवाज़ से और कभी किसी गीत से। और ये जो मोहब्बत है ना, ये बड़ी कॉमन है। मतलब हम किसी गाने से मतलब उससे इतना अटैच हो जाते हैं, उससे हमारी कोई मेमोरी होती है, उस गाने में किसी का फेस, किसी का चेहरा छुपा होता है और किसी की आवाज़ से हमारी कोई याद जुड़ी होती है, किसी शहर से हमारी बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी होती हैं, जहाँ हम कई बार उस शहर के ना होके किसी और शहर जाते हैं। जैसे मैं मुंबई आई हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ और मुंबई मेरा होम टाउन नहीं है, लेकिन मुंबई मुझे बहुत पसंद है। मुंबई में मुंबई की भी एक अपनी अलग ही बात है। तो इसी तरह ऑफकोर्स शहर से भी मोहब्बत हो सकती है, और कभी कभी बस उस एहसास से जिसने हमें अपना सा कुछ मिल जाता है, जिस एहसास में हमको अपना कुछ मिल जाता है, उससे भी मोहब्बत हो जाती है। और इश्क पर तो शायरों ने सदियां खर्च कर दी हैं। हम एक छोटी सी बात कहकर आगे बढ़ जाते हैं, हम तो इतना वक्त खर्च नहीं कर सकते, इसलिए हम ये छोटी सी बात कहकर आगे बढ़ते हैं कि इश्क शायद वही है जिसमें मिलने की खुशी से ज़्यादा किसी के होने का सुकून मायने रखता है। तो इस एहसास को थोड़ा और महसूस करते हैं एक खूबसूरत नगमे के साथ, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल आपके लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

जी बिल्कुल, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखियो। समय हो रहा है 6:54, 54 मिनट्स, और अंदाजे बयां अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है। अंदाजे बयां में आज के लिए बस इतना ही। बस जाते जाते कहना चाहूँगी कि कई बार ना हमें ऐसा लगता है कि कोई कुछ कहना चाहता है पर मतलब फिर आपको पता चल जाता है कि कोई कुछ कहना चाहता है पर वो कहता नहीं है, पर उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके चेहरे के हाव भाव से पता चलता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है। आंखें ना बहुत कुछ कह देती हैं, आवाज़ का उतार चढ़ाव बहुत कुछ बता देता है, और कभी कभी तो सामने वाला सिर्फ ठीक हूँ कहता है और हमें पता है कि बात बिल्कुल ठीक नहीं है। शायद रिश्तों की खूबसूरती यही है, हर बात कही नहीं जाती, कुछ महसूस भी की जाती है। लव्स कम पड़ जाए तो आंखों से बात करना, हर बात जुबा से कह देना भी ज़रूरी नहीं। और अब एक ऐसा गीत जिसमें शायद कुछ अनकही बातें आपको सुनाई दें, तो इसी गीत के साथ 7 बजे से हमारे प्रादेशिक समाचार आएंगे। समाचार के बाद हम मिलेंगे हम तुम में, और हम तुम में जो कि होता है रिक्वेस्टिंग आर, आप लोगों की श्रोताओं की पसंद, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना पसंदीदा गाना भेज सकते हैं, और हमारा नंबर है 8657661071 पर आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के गाने सुनाने की। आप बने रहिए हमारे साथ 107.1 FM रेनबो पे। फ़िलहाल के लिए, थोड़ी देर के लिए, अभी अंदाजे बयां से लेते हैं, अंदाजे वैसे करते हैं अलविदा, और मिलते हैं हम तुम में ब्रेक के बाद। और आखिरी ये गाना अंदाजे बयां के लिए, आज की शायराना शाम के लिए आखिरी गाना।

बहुत ही खूबसूरत गाना ये जुबिन नौटियाल और नीति मोहन जी की आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत गाना है। और समय हो रहा है 7:14, 15 हो चुका है, समय अपना काम कर रहा है, वो अपने हिसाब से चल रहा है और हम भी चलते हैं। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे हम तुम कार्यक्रम में, जहाँ हम कोशिश करेंगे आपकी फरमाइशें पूरी करने की। काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं और मैं देख भी रही हूँ। तो हम तुम कार्यक्रम शुरू हो चुका है और इसको यूं ही जारी रखते हैं बावरे मन के साथ। वैसे जब हम अंदाजे बयां में थे उसके बाद संजय दर्शन जी ने एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है, सामने ना सही पर वो कहीं आसपास तो है, ये क्या कम है कि हमें उनका दीदार तो है। दूरियों से मोहब्बत कम नहीं होती, दिल में हर पल उनका ही एहसास तो है। बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने संजय जी, बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ हम जो अगला गाना सुनने वाले हैं वो भी एक बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट जो है वो आई है, वो हमारे नए श्रोता भी हैं। और जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मुझे लगा उसके बाद मुझे यही गाना प्ले करना चाहिए। तो प्रीतेश मड़वी जी ने अपनी वाइफ के लिए, जिनका नाम ज्योत्सना है, ज्योत्सना जी के लिए एक गाना डेडिकेट किया है, तुम आ गए हो नूर आ गया है। अगला गाना हम यही सुनते हैं फिल्म आंधी से, तुम आ गए हो नूर आ गया है। ये गाना प्रीतेश जी की बीवी के नाम।

ये बहुत ही खूबसूरत गाना किशोर कुमार जी की आवाज़ में, और जो गाना बाबूजी धीरे चलना, वो अरविंद कुलकर्णी जी ने उसकी फरमाइश की थी, और ये ओम शांति ओम गाना चेतन कुमार जी ने। तो और अगला हम जो है गाना बजाने वाले हैं लव इन टोक्यो का, जो फिरोज़ जी ने, फिरोज़ शेखनपुरिया जी ने फरमाइश की है, और प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। बहुत ही खूबसूरत गाना है ये, जो सुनील पांचाल जी ने जिसकी फरमाइश की है। सिर्फ 7 से 8 ही गाने ही बज सकते हैं, ऑलरेडी 7:30 हो चुके हैं, तो हम कोशिश करेंगे गाने बजाने की और भी, लेकिन तब तक ज़्यादा समय ना लेते हुए अगला गाना आपके लिए, आप सभी के लिए, जो गाने बज रहे हैं वो भी सभी लोग इंजॉय कीजिए, बाकी मैं सबका नाम ज़रूर लूँगी। जितने भी लोग हमारे साथ इतनी देर से जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, मैं सबका नाम ज़रूर लूँगी। तब तक आप सुनिए ये गाना।

समय हो गया 7:49 और हम तुम जो है अपने अंतिम चरण पे पहुंच गया है। तो उसी के साथ अभी कुछ गानों की फरमाइश, जैसे पंकज मोहर जी ने बोला था नैना दा क्या कसूर, उनकी फरमाइश प्ले की गई। दिग्दर्शन कविता जी और मुकेश कश्यप जी ने दिए जलते हैं की फरमाइश की थी। प्रदीप अनंत कृष्णन ने दो लफ्ज़ों की है जो दिल की कहानी, इस गाने की फरमाइश की थी। इसी के साथ अगला गाना, हम समय बहुत कम बचा है तो मैं सबके नाम जो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ले देती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं विजेंद्र घटोल जी, जिनका हम अगला गाना चलाने वाले हैं कुड़ी कुंवारी, और हमारे साथ जुड़े हैं राकेश माथुर जी, प्रमोद चिंचोलकर जी, प्रदीप अनंत कृष्णन जी, पंकज मोहड़, फिरोज शिगनपुरिया, आदर्श कनौजिया जी, सुरेश काशीनाथ पाटिल, दत्तात्रेय आदत,

बेलपुर से, और हमारे साथ हैं श्री प्रकाश वाघ पुणे से, रजनीकांत पाटिल, बलकरण वर्मा, प्रणव शिंदे, अरविंद कुलकर्णी जी, श्री धारण बालाचंद्रन जी बाबा दादर से, और सुनील पांचाल, हितेंद्र दास, मुकेश कश्यप, आकांक्षा मनोज सिन्हा, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, हितेंद्र वर्मा, चेतन कुमार, राजू बेरावाला, संजय पाटिल, राजेश लद्धा। और इसी के साथ एक और नाम है हमारे पास, पी एस नहावकर जी, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर जी, ये इन सभी के नाम। तो आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, फरमाइशें तो सारी नहीं हो सकती हैं, पर जैसे मैंने कहा कि मैं अभी प्ले करने वाली हूँ कुड़ी कवारी, जो मैंने बताया जो, और उसके बाद हम प्ले करेंगे फिरोज सिगनपुरिया जी का लव इन टोक्यो का गाना, और इसी के साथ ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। चलिए, पहले आपको बैक टू बैक दो गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ। आज का हम तुम यहीं कंप्लीट होता है, और इसी के साथ अगली बार मिलते हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और जुड़े रहिए 107.1 FM रेनबो के साथ। और मैं आरजे स्वेच्छा आज के लिए इजाज़त लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आपको छोड़े जा रही हूँ इन दो गानों के साथ। गाने को इंजॉय कीजिए और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो।

0: your problem?
1: By the way, तुम्हें क्या करना है?
0: By the way, कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है.
1: तो कर लो ना जो करना है. Don't bother me.
0: Really?

आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया।

0: भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन एक स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए।
1: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
2: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
3: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
2: भारत की अध्यक्षता चार प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। दो दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियाँ हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार तीन प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और

0: और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India supports a safe and sustainable space domain. Virtually addresses first international space summit in Paris. New Delhi gears up to host world leaders at 18th BRICS summit this weekend. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping expected to arrive tomorrow. Home Minister Amit Shah reviews disaster preparedness, calls for climate-resilient villages and cities under zero casualty vision. India and Russia step forward on joint production of civil passenger planes and deliveries of 105 regional turboprop aircraft to Indian operators. Centre amends e-commerce rules to tighten norms on price transparency, sponsored listings and search result manipulation. India Open campaign at World

0: आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेक मी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2 दिन के सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और भारत सहित 11 सदस्य देश शामिल होंगे। ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम भी सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस और ब्राजील के राष्ट्रपति आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि कई अन्य नेता कल राजधानी पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने विषय पर चर्चा के साथ होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में कल दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक

0: पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन 3 विषयों की दोबारा परीक्षा प्रश्न पत्रों में कई गलतियों की शिकायतों के बाद आयोजित की गई थी। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा आज हुई। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एरिया सो नो रन सो अ डॉट बॉल एंड द वेरी फर्स्ट बॉल ऑफ द लास्ट ओवर। वेल द लास्ट ओवर इज नॉट दैट एक्साइटिंग एज वी वुड हैव होप्ड टू। T20 cricket provides an exciting last over, but this time everything is over. So it's just an academically, you know, relevant over. The next one outside the leg stump that kissed the pad, and Nandini had a half-hearted appeal to offer. The umpire says no. Shona remains on 21, and 104 is the total of Bangladesh. 104 for 5. 150 is the target, and that has been an elusive target as far as Bangladesh is concerned in this particular match. Nandini over the wicket, and Shona goes for a big one, and the ball will be fielded by the long off fielder. One bounce straight to Dipti Sharma, and Dipti Sharma will throw the ball back to the keeper, and the batter will get a single for that. 3 balls left in this match. India already through to the finals, and we will be discussing everything about the match, what went wrong for Bangladesh in the post-match discussion. That is a player of the match that will come shortly after the match ends. And this time that was an innovative shot from Fahima, scooping over the wicketkeeper, and she will get a boundary for that, but that's insignificant in the context of the match and in the context of this semi-final. So that was a good shot, an innovative shot. The question is, where were these shots earlier? Fahima is on 14 of 13 deliveries. Nandini will be bowling the penultimate delivery of this match. This is the last over in progress. Bangladesh are on 109 for the loss of 5 wickets. Over pitch delivery, and Fahima goes for a big one. Can't connect it properly, and the ball goes to the point fielder. That's another catch, another wicket goes, and Bangladesh lose the 6th wicket in the penultimate ball of the match. And the next batter will come to face the last ball of the over, the last ball of the innings, and the last ball of the match, but will have really nothing to do in the context of the match, because the match is already over, as India have already gone through to the final.
2: जी हाँ, फहीमा खातून 14 बनाए 14 गेंदों पे, 109 पर 6 बांग्लादेश, यानी 41 रन दूर उस लक्ष्य से आखिरी गेंद बाकी इस मैच की। सवाल ये नहीं

0: जीत भारत के नाम आएगी या नहीं, सवाल यह कि कितनी बड़ी जीत आएगी, कितने रनों से जीत आएगी। फिलहाल तो 40 रन आ गए हैं अभी, क्या ये 40 रन की जीत होगी या उसमें कुछ कटौती होगी?
1: Rabia is the new batter and she goes for a slog sweep and is beaten completely and the bails are dislodged, so she is bowled as well. So wicket in the last ball of the innings. So back-to-back wickets for Nandini and India win the semi-final encounter comprehensively by 40 runs. So India will be playing another final and India will be playing the 10th final in as many Asia Cup editions. So well played India. So India have defeated Bangladesh and are through to the finals, and the Indian team will have to wait for the winner of the second semi-final that will be played tomorrow between Pakistan and Sri Lanka. Well, as of now, we'll have the post-match discussion, player of the match with our experts. From our commentary team, from our Hindi commentator Raman Bhanot, from me Niladri Sen, scorer Bhagwat Singh Rawat and statistician Manoj Kumar, we bid adieu, goodbye, but stay tuned for our post-match present for post-match discussion, player of the match.
2: Player of the match.
3: And we have it there, a comprehensive, confident, a very convincing victory out there by the Indian women today. 149 for 6 that the Indian women made in 20 overs. Bangladesh was able to put up only 109 for the loss of 7 wickets in their allotted 20 overs. And thereby, the Indian women finally storming into the finals of the ongoing Asia Cup 2026. I'm Sakshi Mandwal, joined over here by my dear friend and co-host for the evening, Anand Shivastav. Good evening, Anand.
4: Good evening. और इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैं, बीसीसीआई कोच रविंद्र सिंह और वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
5: शुक्रिया।
3: ओके, वेरी क्विक क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम अपने श्रोताओं को भी बधाई दे दें कि भारतीय महिलाएं अब की बार एक बार फिर से एशिया कप 2026 के फाइनल्स में एंटर कर चुकी है, द 10th कंसेक्यूटिव एंट्री बाय इंडिया, इंडियन वुमेन शुड आई से, इन क्रिकेट इन एशिया कप फाइनल्स। मोना, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस?
5: बिल्कुल, दसवां टूर्नामेंट है, 10 बार इंडिया फाइनल में पहुंचा है, तो डोमिनेंस की अगर कोई परिभाषा होती है तो वो यही है। और जिस तरीके से आज खेल दिखाया है भारतीय टीम ने, हम पहले बात कर रहे थे कि रन में शायद हम पीछे रह गए, लेकिन गेंदबाजों ने वो कमी पूरी कर दी। और स्पिनर्स खास तौर पे यहाँ बात करेंगे, दीप्ति शर्मा की, क्या मैच विनर प्लेयर है, फॉर्मेट कोई हो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी वर्ल्ड कप में, और अब भी आप देखिए कि सबसे ज़्यादा 11 विकेट उनके नाम हो गए हैं एशिया कप में भी, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन।
4: जी हाँ, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन दीप्ति शर्मा का, 26 रन देकर उन्होंने 3 विकेट लिए हैं, साथ ही साथ नंदिनी शर्मा को 2 विकेट मिले, दोनों विकेट उनको आखिरी 2 गेंदों पर मिले हैं। साथ ही साथ श्री चरणी, जो इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस साल भारत की लीडिंग T20I विकेट टेकर हैं, उनके नाम 1 विकेट, और प्रेमा रावत ने भी 21 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। रविंद्र, देखने में ओवरऑल बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा, एक समय लग रहा था कि हम 10-15 रन पीछे हैं, लेकिन बांग्लादेश कहीं से भी इस रन चेज में टक्कर देता नजर नहीं आया।
6: देखिए, शुरुआत में तो जैसे 2 ओवर निकले थे, 3 ओवर निकले तो ऐसा लग रहा था कि टक्कर शेषा शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास एक ट्रम्प कार्ड है, तुरुप का इत्ता है श्री चरणी। ये बॉलिंग एनालिसिस, शायद उसके ज्यादा विकेट्स नहीं मिले हैं, लेकिन जो 4 ओवर में 14 रन और 1 मेडन है, 1 मेडन T20 में होना बहुत बड़ी बात है, और ये जो बॉलिंग दिखा रहा है ये पूरे मैच को पलट देती है। श्री चरणी इस समय एक स्पिनर सारे अच्छे हैं, लेकिन जो श्री चरणी बॉल कर रही है वो वाकई उसको लेवल बहुत ऊपर है, इसकी वजह से आपको अच्छी अच्छी टीमें इस समय धराशायी होती दिख रही है।
3: जी, और इसी बात को थोड़ा आगे लेके भी जाए तो बांग्लादेश की जो क्रिकेट में, मतलब बांग्लादेश के क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने शुरुआती फेज में हम देखेंगे पहले 6 ओवर्स के अंदर कोशिश जरूर करनी चाहिए थी कि एक फास्ट अटैक के थ्रू अग्रेसिव क्रिकेट से इनको लीड दिलवा सके, बट दे वर नॉट एबल टू स्टिक टू दैट मोमेंटम एंड पेसिंग। कंटिन्यूअस विकेट लॉस अफेक्टेड द

0: बांग्लादेशी वेमेन वेरी स्ट्रांगली टुडे मोना.
1: बिल्कुल, आप देखिए कि चार विकेट निकल चुके थे, 70-75 रन का स्कोर था जब टीम का, और शुरुआत में लगा था कि एक दो अच्छे स्ट्रोक्स लगाए थे, खासतौर पे जो दूसरे तीसरे ओवर में एक चौका आया था ज़बरदस्त, और भारतीय खिलाड़ियों से भी कुछ कैच छूटे. पहले प्रतिका ने कैच छोड़े, उसके बाद एक कैच बाद में भी छूटा, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये फील्डिंग लैप्सेस भारी पड़ जाए या बांग्लादेश के बैटर्स आज अच्छा खेल जाएंगे, लेकिन वो जो नियमित अंतराल पे उनके विकेट गिरते रहे और वो मोमेंटम बन ही नहीं सका, जिसको कहते हैं कि 150 रन भी अगर आपको बनाने हैं तो आपको एक एंकर चाहिए जो पारी को संभाल के खेल सके और दूसरे छोर पे बल्लेबाज को खुलकर खेलने की आजादी दे. वो कहीं नजर नहीं आया. गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेल के बांग्लादेशी बल्लेबाज आउट होते चले गए.
2: इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं. स्वागत है आपका. जी नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं?
3: मेरा गांव है जी पुराना, जिला फाजिलका, पंजाब से बोल रहा हूँ, कुलदीप जी.
2: जी बताएं.
3: मैं पहले तो सब देशवासियों को अपनी जो टीम है वुमेन टीम है फाइनल में पहुंची है उसके लिए बधाई देता हूँ जी. और आज तो ना शेफाली वर्मा ने वीरेंद्र सहवाग की याद दिला दी हमें जी.
2: ये कह रहे हैं शेफाली वर्मा ने जिस तरीके की बैटिंग की, इनको वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी की याद आ गई.
4: बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपको याद आई. वीरेंद्र सहवाग अच्छी बैटिंग करी उन्होंने, चाहे 2-3 चांसेस मिले, लेकिन वाकई अच्छी बैटिंग करके उन्होंने टीम के स्कोर को 150 तक पहुंचाया. नहीं तो टीम का स्कोर लग रहा था कि 125-30 पर ही खत्म हो जाता है. लेकिन लेकिन ऐसी बैटिंग उनसे कंसिस्टेंट चाहिए, क्योंकि 6 ओवर जो पहले पावर प्ले के 6 ओवर होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं. हमने पहले बताया था कि बांग्लादेश को भी पहले 6 ओवर में 40 रन तो चाहिए अगर एक अच्छा स्टार्ट मिलता है, क्योंकि स्पिनर्स के बाद गेम को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए. इसलिए वो मीडियम पेसर्स को अटैक भी कर रहे थे शुरू में कि इनको जितने ज्यादा रन बटोरे जा सके. लेकिन वो श्री चन्नी ने वो तीसरे ओवर में आके वो गेम को पाछा पलट दिया.
0: सवाल मेरा आपसे मोना ये होगा कि हम बात करते हैं कि बांग्लादेशी क्रिकेट में काफ़ी बेहतरी हुई है ओवर द ईयर्स, इजाफा जिसको हम कहते हैं उनके खेल के प्रदर्शन में भी, लेकिन क्या आपको सही मायने में दिखता है दैट द बांग्लादेशी वुमेन्स क्रिकेट हैज़ इवॉल्व फॉर द बेटर और देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट इन बांग्लादेशी वुमेन क्रिकेट?
1: देखिए, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे टूर्नामेंट नहीं जीते जा सकते. बेहतरी हुई है उनके पास, कई अच्छे खिलाड़ी आए हैं जिनमें से एक उनकी स्विंग बॉलर है मारूफा अख्तर, लेकिन एज अ टीम एज अ यूनिट आपको हर डिपार्टमेंट में अच्छा खेल दिखाना होगा. अगर एक डिपार्टमेंट कम रह गया है तो दूसरे को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, जैसा चैंपियन टीमें करती है. लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कमी है अभी जो नज़र नहीं है, जो नज़र आती है कि आप जब तक ICC टूर्नामेंट बड़े टूर्नामेंट नहीं जीतोगे, एक पैरामीटर होता है आपके जो आपने प्रगति की है, जो विकास किया है, जो आपके प्रदर्शन में सुधार आया, उसके लिए आपके कैबिनेट में ट्रॉफीज भी होनी चाहिए. तो मुझे लगता है कि उस मामले में अभी बांग्लादेश जब तक कोई बड़ी ICC खिताब नहीं जीतता तब तक हम ये कह सकते हैं कि अभी भी वो विकास की राह पर है.
0: राइट.
2: जब हम जीतते हैं तो बहुत सारी कमियां छिप जाती हैं रविंद्र जी. आज 40 रन की इस जीत में एक जो कमजोर पहलू था वो भारतीय फील्डिंग थी. 3 कैचेस छूटे, कुछ मिस चांसेस हमने रन आउट में भी देखे, और प्रतिका रावल इस टूर्नामेंट में अब तक 4 ड्रॉप कैचेस उनके नाम है.
4: देखिए, बिल्कुल सही कहा क्वेश्चन आपका कि ये जीत में बहुत कुछ छुप रहा है, लेकिन ये आज बांग्लादेश की इमेच्योर बैटिंग थी. कहीं पे कोई बैटिंग लग नहीं रही थी कि कोई कोई जिस हिसाब से लेवल है वहां खेलना चाहिए. प्लेयर्स एक ही शॉट खेले जा रहे हैं, स्वीप करे जा रहे हैं. उनको किसी ने ये नहीं बताया कि ऑफ साइड में कवर्स पर सामने खेलना चाहिए, वी में खेलना चाहिए. इसके लिए अभी इनको बहुत काम करना पड़ेगा. जिस हिसाब से बांग्लादेश की जो बॉलिंग अच्छी है, बॉलिंग में नो डाउट ये वैसे बड़ा ने बताया, अच्छे इन स्विंगर बॉलर मिल गया आपको, एक दो बॉलर अच्छे हैं, लेकिन आपको बैटिंग में बहुत काम करना पड़ेगा. नहीं तो ये एक जो आज जिस हिसाब से इंडिया ने फील्डिंग करी है और जिस हिसाब से इंडिया में सिर्फ शर्नी को छोड़ के बाकी बॉलर इतने ऐसे नहीं थे कि उनको रन नहीं बनाए जा सकते थे. अल्टीमेटली आपने कोई बैटिंग नहीं करी लेकिन तब भी 40 रन का डिफरेंस रह गया. अगर दो प्लेयर आपके अच्छी बैटिंग करते तो ये रन आराम से चेज हो सकते थे.
0: या एंड आई थिंक समवेयर ये भी चीज हमने देखी आज की, जिस तरह से जो बांग्लादेश का इनिशियली अप्रोच दिखा था, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, ऐसा लगा कि वो कोई एक प्लान लेके उतरे हैं कि पावर प्ले में कितने रन बनाने. बहुत जल्दी उनका वो सारा अप्रोच डिसॉल्व होता हुआ नजर आया. रेकलेस इंपल्सिव शॉट्स, टारगेट इतना बड़ा था नहीं, फिर भी उनके अंदर जो एक कहते हैं ना एक मचलता दिखाई दी कि रन्स को जल्दी जल्दी बटोरो किसी तरीके से।

0: Deepthi was excellent today.
1: Yep.
0: Whenever we needed, she came up and gave us a few breakthroughs.
1: I thought you summed up really beautifully with the last question. All the very best to you for the final as well. Well done.
0: Thank you so much.
1: Thank you very much. This captain of India, Harmandeep Kaur, that's it from the presentation.
2: Well, a very happy Indian captain out there, Harmanpreet Kaur, and all the reason more for her to be so, because it's been an unbeaten run for the Indian women in the ongoing Asia Cup 2026. And ek cheez Mona jo unhone baat kahi abhi post match ceremony mein, which stood out for me, was ki there was value to the good balls, and on both the teams of course spinners ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन अच्छी बॉल को इज्जत देना बहुत ज़रूरी था. एंड पॉसिबली दैट वॉज वन ऑफ द थिंग्स दैट वर्कड बेटर फॉर इंडिया एज कम्पेयर टू बांग्लादेश.
3: जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि रेकलेस बैटिंग बांग्लादेश की रही, वो अच्छी बॉल को इज्जत देने की ही बात है कि भारतीय बल्लेबाजों ने ढीली गेंदों का इंतजार किया, अच्छी गेंद को इज्जत दी. तो मेरे ख्याल से हरमनप्रीत का कहने का मतलब वही था कि जो रेकलेस शॉट्स थे वो हालांकि कुछ बचा जा सकता था, लेकिन एक कैप्टन का जो ऑब्जर्वेशन है उस हिसाब से यह है कि अच्छी गेंदों को उन्होंने इज्जत दी और ढीली गेंदों को नसीहत दी, जो बांग्लादेश की टीम, जैसे आप कह रहे, नहीं कर पाई. और जिस तरह से हमने देखा उनके विकेट जिस अंदाज में गिरे हैं, तो उससे यही है कि जो आपके यहाँ की अच्छी गेंदों को इज्जत देना.
4: एक बार फिर आज के मैच में दीप्ति शर्मा ने दिखाया कि अनुभव का कोई तोड़ नहीं, और जिस लेंथ पर वो खास तौर पर गेंदबाजी कर रही थी, बांग्लादेश के बैटर्स सोच रहे थे कि फ्रंट फुट पर खेले, बैक फुट पर खेले, और कुछ एक गेंद जो स्पिनर्स के लिए कही जाती कि खिंची हुई लेंथ पर गेंद, और वहीं पर उनको 3 विकेट मिल गया.
5: बिल्कुल, देखिए ये ना एक्सपोजर की बात है, खेलने की बात है, कितना आप खेलते हैं उसको बहुत मैटर करता है. जो इंडिया के बॉलर्स खेलते हैं, इनके पास एक्सपोजर है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना खेलते हैं उतना मुझे लगता नहीं कि बांग्लादेश की टीमों के पास इतने रिसोर्सेज भी होंगे या इतनी सब मैचेस मिलते होंगे जितने इंडिया को मिलते हैं. इसका यही चीज़ का बेनिफिट है. लेकिन ये जो फिर जो आपने बताया है, आप ये देखिए जब अच्छी टीमें आती हैं तो इसी से बड़ी मैटर करती हैं. जहाँ पर आप देखिए वर्ल्ड कप वगैरह में इंडिया जाती है तो उसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के सामने हम लोग नहीं टिक पाते हैं, वहाँ पे हम लोग इन चीज़ों मात खा जाते हैं, क्योंकि वो उनकी फील्डिंग लेवल और हमारी फील्डिंग लेवल में बहुत फर्क है. ये इंडियन जो हमारी टीम को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इनसे जीत तो रहे हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी कमियाँ हैं, जहाँ आपने कैचे छोड़ी हैं, और जो अभी उन पर ज़्यादा बैट्समैन बैटर दिख नहीं रहे थे जो कि अटैक कर सकें, लेकिन अच्छी टीमों में आपको अच्छे बैटर मिलेंगे और अच्छी फील्डिंग भी मिलेगी, वहाँ पर आपके जो कैचेस बहुत महंगे पड़ने वाले.
2: राइट, मोना आपके पास आती हूँ. उससे पहले मुझे बताया जा रहा हमारे साथ इस वक्त एक श्रोता जुड़ गया है, उनसे भी बात कर लेते. नमस्कार, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे?
6: नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग.
2: गुड इवनिंग,
6: राजस्थान बाड़मेर से बोल रहा हूँ.
2: स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या पूछना चाहते हैं.
6: पहले सब आप टीम को और हमारी बहन को शुभकामना, हार्दिक स्वागत करता हूँ.
2: थैंक यू सो मच. थैंक यू.
6: मैं ये बोल रहा हूँ, जो ये मेरा दो पसंद है, एक तो मतलब जो ये परिमा रावत जो बोल रहे हैं, स्पिनर इसकी जगह पे राधा यादव होती, और एक जो इस पर की मंदाना पहले आती परिमा, ये क्या नाम, पतिका रावल, इसकी जगह जो जमीका रोड्रिक होती तो ये अच्छी बल्लेबाजी भी होती.
2: जी, जमीका रोड्रिक्स के बारे में बता दें कि उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से वो मैच का हिस्सा नहीं बन पाई है काफ़ी समय से. लेकिन दूसरा, इन्होंने यहाँ पर हमारे बॉलर के ऊपर बात करी है मोना, और इनका ये कहना था कि जिस तरीके से प्रेमा रावत है, उनकी जगह अगर राधा यादव होती तो शायद ज़्यादा बेहतर बॉलर का एक हमें कह लीजिए सब्स्टिट्यूट या फिर ऑप्शन मिल जाता. प्रेमा रावत ने 4 ओवर में 21 रन देके 1 विकेट निकाला एट एन इकोनॉमी ऑफ 5.2 एंड दैट इन इटसेल्फ, जिसमें उनकी बांग्लादेश की कप्तान यानी निगार सुल्ताना जी, वो उनका सबसे इंपॉर्टेंट विकेट रहा है.
3: आप मुझे बताओ, T20 क्रिकेट में 6 से नीचे की इकोनॉमी से अगर कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है और इम्पोर्टेंट विकेट भी ले रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे समय में आप उसके टीम में रहने पर सवाल उठा सकते हो. जो आपको परफॉर्मेंस चाहिए, और सिर्फ इस मैच में नहीं, प्रेमा ने थ्रू आउट टूर्नामेंट अच्छी गेंदबाजी की है, अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है टीम के लिए, और अभी तक भारत का अपराजय रहा है अभियान जो है, एक भी मैच हम हारे नहीं है, तो एक अच्छा खासा विनिंग कॉम्बिनेशन है. मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी खिलाड़ी की भूमिका पर आप उंगली उठा सकते हैं.
4: प्रेमा रावत ने इस टूर्नामेंट में इस मुकाबले से पहले

0: 5 विकेट लिए थे तो अच्छी फॉर्म में हैं और आज भी उन्होंने एक सफलता हासिल की है। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं प्लेयर ऑफ द मैच कार्यक्रम में। नमस्कार, स्वागत है आपका।
1: अरे हूँ मैं वही वेंकट रेड्डी, गांव लकवरम, जिला सूर्यपेट, तेलंगाना से।
0: जी रेड्डी साहब स्वागत है, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप।
1: हमारी टीम फाइनल में आ गई के लिए मुबारकबाद, और फाइनल में हम एक चेंज के साथ आना चाहिए कि प्रतिका रावल, सॉरी भारती फूलमाले के बैट पर लगने से बॉल इंटर कर रहे हैं, इसीलिए इनको चेंज करना चाहिए। अब फाइनल में भारत हमेशा की तरह अच्छी खेल पेश करना चाहिए, श्रीलंका के साथ अच्छा मैच खेल के आशिया कप को लाना चाहिए, ये तो मेरा मानना है। अब क्या कहते हैं
0: भारती फूलमाली को लेकर इनका सवाल है, लेकिन बहुत ज्यादा गेंदे इस टूर्नामेंट में उनको खेलने को नहीं मिली है रविंद्र, बहुत ज्यादा हार्श हो रहे हैं श्रोता भारती को लेकर।
2: बिल्कुल, देखिए उनको पूरा मौका नहीं मिल पाया भारती को भी, लेकिन अभी पूरी तरह आप देख नहीं पाए, अच्छी अच्छी बैटर है, लेकिन आप ये देखिए जो बाहर की जो बेंच स्ट्रेंथ है उसमें कोई बैटर नहीं है, आप खिलाएंगे किसको, आप सारे बॉलर्स हैं और एक विकेट कीपर है, तो कोई बैटर नहीं आपके पास, तो मुझे लगता है कि अब आपको इन्हीं से जाना पड़ेगा और इन्हीं पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, और उम्मीद करिए कि ये अच्छी बैटिंग करके दिखाएंगे।
3: राइट, ओके, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं बिकॉज वी आर ऑल्सो लुकिंग एट द फाइनल्स अब तो, और भारत के चांसेस मोना आपके पास भी आऊंगी, रवि आपसे पूछूंगी, आप दोनों किस प्रकार से देखते हैं फाइनल के अंदर। अभी मैं पता होना चलना है कि कल के मुकाबले में जो पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में होने वाला है, जो भी उस मुकाबले को जीतेगा भारतीय टीम का अपोनेंट बनेगा फाइनल्स के मुकाबले में, पर भारत के चांसेस आपको किस तरीके के दिखते हैं।
4: देखिए अभी तो पहले हमें पता चलना चाहिए कि कौन खेल रहा है भारत के खिलाफ, वैसे ज्यादा चांसेस है कि श्रीलंका से ही फाइनल होगा, श्रीलंका पहले भी खिताब जीत चुका है दो बार, और इस टूर्नामेंट में अगर श्रीलंका की बात करें तो बांग्लादेश ने ही उसे बहुत कड़ी टक्कर दी थी, तो मुकाबला भारत के खिलाफ खेलना, वैसे भी 7 बार की चैंपियन भारतीय टीम है, एक प्रेशर होगा, और इतनी कन्विंसिंगली जीत कर जा रही है फाइनल में टीम, तो अब देखना होगा कि कल श्रीलंका का प्रदर्शन कैसा रहता है, उसके आधार पर ही कोई कयास, और उससे पहले भारत को अपनी जो कमज़ोर कड़ियां हैं उनको दुरुस्त करना होगा।
3: ओके
0: जी हाँ, कमज़ोर कड़ियों की जब चर्चा हो रही है तो पहली कमज़ोर कड़ी जो भारत का है वो मध्यक्रम, आज भी उस तरीके से प्रदर्शन नहीं हो पाया, चाहे हरमन का बल्ला हो, चाहे प्रतिका रावल हो, ऋचा घोष भी उस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी नहीं कर पा रही हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर में हमने देखा कि भारती की चर्चा हुई, बहुत कम गेंद उनको खेलने को मिली, साथ ही साथ दीप्ति शर्मा ने आज ज़रूर बेहतर प्रदर्शन किया। और दूसरी कमज़ोर कड़ी जो इस टीम इंडिया की है वो है फील्डिंग, क्रूशियल मौकों पर अगर आप कैचेस छोड़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप उस मोमेंटम को लूज करेंगे। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
5: हेलो,
0: नमस्कार।
5: नमस्कार सर।
0: जी बताएं कहां से बोल रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं।
5: सर मैं प्रकाश बोल रहा हूं अमरावती से।
0: जी प्रकाश जी,
5: बहुत 50 बार ट्राई करने के बाद अभी चल के मेरा कॉल लगा है।
0: जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप।
5: आपको इंडियन टीम जीतने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो वहाँ पे ना मेरे फेवरेट रवि सर है वहाँ पे एक बट, तो मेरा उनसे ये सवाल है। रवि सर नमस्कार।
2: नमस्कार।
5: तो सर हमारे विमेन्स टीम में जो इंडिया विमेन्स टीम है, आप वो बेहतर जवाब दे पाएंगे कि सर हमारे मिडल ऑर्डर में ना फायर पावर की जो कमी है, या फिर देखो मेंस टीम में जैसे कोहली है स्ट्राइक रोटेट बार बार होती है, तो विमेंस टीम में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि फायर पावर आए या फिर डोमेस्टिक प्लेयर को चांसेस दिए जाए।
2: देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बैटिंग में मुझे थोड़ी कहीं ना कहीं वीकनेस लग रही है, जेमिमा के ना होने से भी थोड़ा फर्क पड़ रहा है बीच में टीम में, भारतीय अभी पूरी तरह बैटिंग अब उनको पूरी तरह मिली नहीं है, और हरमनप्रीत अभी उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। जब 3-4 बैटर आपके सामने ऐसे केसेज आ जाएँ तो मिड ऑर्डर हमेशा थोड़ा सा चरमरा सा जाता है। स्मृति उसकी कमी को पूरा कर रही हैं, शेफाली पूरा कर रही हैं, और प्रतिका रावल से हमें उम्मीद है कि इस समय प्रतिका रावल का चलना ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि फाइनल में थोड़ा जो भी आज कमियाँ रहेंगी उनको मैनेजमेंट ठीक करेंगी जाएगी और ये बैटिंग आपको थोड़ा बेटर होगा, अगले मैच में बेटर दिखेगी फाइनल्स में।
3: राइट, सो अगले मैच में हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि यानी अगला मैच तो अब क्या कहें, सिर्फ फाइनल्स ही है एंड द बिग डे जो कि रविवार को होगा जब भारतीय टीम सामने आमने होगी इधर श्रीलंका या फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो उसमें हमें ये उम्मीद रखनी पड़ेगी कि प्रतिका रावल जिन्होंने आज एक बार फिर से एक मीडियोकर पारी खेली हम कह सकते हैं, पारी को संभालने वाले किरदार को निभाने आई थी नंबर तीन पर लेकिन खेल के गई जिसमें 24 में 20 रन उन्होंने बनाए 24 गेंदों में। बट उससे ज्यादा बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न जो मुझे लगा वो थी हरमनप्रीत कौर मोना जिन्होंने काफी बॉले 16 गेंदें इनिशियली वेस्ट करी और फिर मोमेंटम पिकअप किया। अगर श्रीलंका संडे को हमारे सामने आती है तो ये पॉइंटर्स या ये जो एरिया ऑफ कंसर्न्स हैं बहुत बुरी तरह से भारतीय टीम के एक्सप्लॉइट हो सकते हैं अगर हमें अच्छी ओपनिंग नहीं मिली और उस दिन सामने बांग्लादेश नहीं होगी।
4: मैं मैच के बीच में देख रही थी कि ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था कि आज टॉकिंग पॉइंट क्या होगा, हरमनप्रीत कौर का स्ट्राइक रेट या ड्रॉप्ड कैचेस। तो मुझे लगता है कि ड्रॉप्ड कैचेस पे तो काफ़ी बात हो गई है लेकिन हरमनप्रीत का स्ट्राइक रेट लगातार, वर्ल्ड कप में भी काफ़ी इस पर बात हुई थी लेकिन बाद में एक पारी उन्होंने अच्छी खेली थी। तो जब आपके पास स्मृति मंधाना या शेफाली वर्मा अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो सबसे अनुभवी और अच्छी बल्लेबाज हैं हरमनप्रीत। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले बड़ी पारियां ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ उन्होंने बड़ी बड़ी पारियां खेली हैं, तो लोगों को उसी हरमनप्रीत कौर का इंतज़ार है जो कप्तानी पारी खेले, मोर्चे से अगुवाई करे। वो कहीं इंटेंट अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो फाइनल मैच है, उम्मीद यही करेंगे कि कप्तान एक उस पुरानी हरमनप्रीत कौर की झलक देखना चाहेंगे जो मैच जिताती थी अपने बल्ले से।
0: रविंद्र जी, जब टीम जीत रही होती है तो कोई भी कप्तान या टीम मैनेजमेंट जिसमें कोच भी शामिल होता है वो टीम की संरचना में बदलाव नहीं करना चाहता। यहाँ पर जैसे कि हम वीक लिंक की बात कर रहे हैं तो वीक लिंक में हम देख रहे हैं कि मध्यक्रम है जहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, क्रांति गौड़ को विकेट नहीं मिले हैं क्योंकि ये स्पिन फ्रेंडली ट्रैक हैं, ज़्यादातर स्पिनर से गेंदबाजी कराई जा रही है। क्या देखते हैं यहाँ पर, रेणुका ठाकुर भी हैं इस 15 सदस्यीय टीम में बड़े मैच में, क्योंकि हमने देखा कि मारूफा अख्तर को जिस तरीके से स्विंग मिल रही है रेणुका उसमें महारत हासिल कर चुकी हैं, क्या उनको चांस देने के बारे में सोचा जा सकता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही पाया है कि क्रांति गौड़ के बदले आप रेणुका को चांस दे सकते हैं क्योंकि रेणुका का बॉल स्विंग भी ज़्यादा होता है और क्रांति उतना अच्छा बॉल नहीं कर पा रही जिस हिसाब से है। ये भी डिपेंड करता है कि विकेट टर्निंग ट्रैक्स है तो मीडियम पेसर्स को ज़्यादा मदद नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि क्रांति से अगर वो रेणुका नेट्स अच्छा बॉल कर रही है, मैनेजमेंट को लग रहा है कि अगर उनको उनका टच अच्छा है तो खिलाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
3: अब क्विकली थोड़ी सी एक बार कल के मुकाबले की भी बात कर लेते हैं, श्रीलंका अप अगेंस्ट पाकिस्तान। श्रीलंका का मिन अनडिफीटेड अनबीटन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, अपने ग्रुप बी के तीनों मुकाबले ये टीम जीत कर आ रही है, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होने वाला है। पाकिस्तान समहाउ हैज पिक्ड अप द मोमेंटम एट द राइट टाइम बिकॉज जस्ट कहते ना पीकिंग एट द राइट टाइम जो कि एक चीज़ वो एक टर्म होती है, पाकिस्तान उस तरह की स्थिति में है। कल का मुकाबला आप किस तरह से आंकती है मोना?
4: मुझे लगता है श्रीलंका का पलड़ा ही भारी रहेगा, एक तो डिफेंडिंग चैंपियन है, पूरे टूर्नामेंट में एक मैच में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था लेकिन अच्छा प्रदर्शन रहा है, कई मैच विनर है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन पाकिस्तान कर रहा है, मोरल बहुत डाउन हुआ होगा कहीं ना कहीं क्योंकि ग्रुप फेज में एक भारत ही था जिसके खिलाफ हार्ड टेस्ट था उसके लिए और उसमें वो बिल्कुल ही 19 साबित हुआ। तो काफ़ी कठिन चुनौती है पाकिस्तान के लिए कि रीग्रुप करके श्रीलंका जैसी टीम के सामने अच्छा परफॉर्म करना, तो मुझे लगता है इस मैच में श्रीलंका का पलड़ा ही भारी होने वाला है।
0: रविंद्र, कल दो ऐसे बॉलर्स के बीच भी फाइट देखने को मिलेगी, एक तरफ चमारी अट्टापट्टू जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 7 विकेट लिए, पाकिस्तान के लिए नासरा ने 6 विकेट चटकाए, तो वो बैटल भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
2: बिल्कुल होगा, नो डाउट कि लेकिन जो इस समय श्रीलंका का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है मुझे लग रहा है कि और जो उनकी थोड़ी बहुत बैटिंग में फर्क है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग और श्रीलंका की बैटिंग में ही फर्क रह जाएगा और वो श्रीलंका ही एकमात्र ऐसी टीम लगती है भारत के बाद इस एशिया कप में जो कि जहां पर अब उनके जो कप्तान हैं बहुत डेंजरस प्लेयर हैं, अगर वो खड़े हो जाते हैं तो T20 में अकेला ही मैच अकेले ही मैच खत्म कर सकते हैं, 70-80-90 रन बनाने की दायरा रखते हैं वो। तो मुझे लगता है कि यहां पे उनको जो कप्तान अट्टापट्टू है उनका उनका उनका सबसे बड़ा डिफरेंस रहेगा।
3: राइट, थोड़ा सा पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं. हमें पता है पाकिस्तान है, इंडिया के जब मुकाबले होते हैं तो एक राइवलरी ऑन फील्ड कही जाती है, लेकिन पर से वो राइवलरी अब उतनी दिखती नहीं है. खासतौर से अगर हम पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस की भी बात करें तो थाईलैंड के अगेंस्ट 119 में थाईलैंड ने पाकिस्तान को समेट दिया था या रिस्ट्रिक्ट कर दिया था. भारत के खिलाफ वाले मुकाबले को तो हम भूल नहीं सकते, मेयर 55 रन रहे. सो पाकिस्तान का जो कहते हैं ना एक इंटरनल कॉन्फिडेंस होगा इस सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर आते हुए, मनोस्थिति भी उसके साथ साथ, आपको लगता है कि दे विल बी एबल टू प्ले फॉर देयर प्राइड एंड पुट अप अ गुड फाइट टुमारो?
4: वही मैं आपसे कह रही थी कि पाकिस्तान का मोरल पूरी तरह से डाउन होगा भारत के खिलाफ जो उनका प्रदर्शन रहा है. और ये जो राइवलरी की बात करते हैं, मुझे लगता है अब ये बंद कर देनी चाहिए. कोई राइवलरी रह नहीं गई है, ना मेंस क्रिकेट में ना विमेन क्रिकेट में. जमीन आसमान का फर्क है प्रदर्शन में, और उसमें एक एक्सपोजर की भी बात है. इंडियन क्रिकेटर्स इतना क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तान में अब वो क्वालिटी रह नहीं गई है. जो हम बार बार मैदानी प्रतिद्वंदिता की बात करते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा बड़ी प्रतिद्वंदिता भारत और ऑस्ट्रेलिया की लगती है. तो वो मोरल डाउन है पाकिस्तान का, परफॉर्म नहीं कर पा रही है टीम. और कल श्रीलंका की चुनौती भी उनके लिए बहुत कड़ी होने वाली है. तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बहुत कड़ी टक्कर या कोई उलटफेर की संभावना, लेकिन फिर ये अप्रत्याशित प्रारूप है, कुछ कहा नहीं जा सकता. जो आकलन होता है, हमने पहले भी बात की थी कि वो पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे होता है, रिकॉर्ड के आधार पर होता है, प्लेयर्स की फॉर्म के आधार पर होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज के आधार पर होता है. और वहाँ मुझे लगता है श्रीलंका काफ़ी आगे है.
3: राइट, सो होपफुली इट्स गोना बी ब्राइट डेज टुमारो फॉर एवरीवन. आई थिंक ब्राइट डेज तो ऑलरेडी हर भारतीय क्रिकेट फैन के लिए हो चुके हैं, बिकॉज भारतीय महिलाओं की टीम इस ऑन गोइंग एशिया कप 2026 के फाइनल्स में एक बार फिर से पहुंच चुकी है. द 10th कंसेक्यूटिव एंट्री फॉर द इंडियन वुमेन आउट देयर इन द एशिया कप और 2026. आनंद
0: जी, हाँ, 40 रन से आज भारत ने जीत दर्ज की है, और हम सब उम्मीद करेंगे कि जब रविवार को भारतीय टीम फाइनल में उतरेगी तो एक नया इतिहास लिखेगी. प्लेयर ऑफ द मैच कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ने के लिए बीसीसीआई कोच रविंद्र सिंह जी आपका और वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पारसारथी आपका बहुत बहुत आभार.
4: थैंक यू.
0: इस कार्यक्रम में हमें टेक्निकल सहयोग दिया लीला सेठी ने, उर्मिला कपिला और नागेंद्र पटेल ने. साथ ही साथ प्रस्तुतिकरण में सहयोग प्राप्त हुआ वंदना भारद्वाज का, माधवी तिवारी का और स्वाति कपूर का. और इस पूरे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान. आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ. नमस्कार.
3: नमस्कार.
6: प्लेयर ऑफ द मैच.
7: अभी आप विमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे.
8: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द फर्स्ट सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑफ विमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.

जी हाँ, प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना रंगी महफिल। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेडियो पर। इश्क है तो है, तुम्हें खबर हो ये जरूरी तो नहीं। इश्क

तो है तुझे खबर हो ये जरूरी तो नहीं, मैं तुम्हें चाहूं बस इतना काफी है, तुम भी चाहो ये जरूरी तो नहीं। तुम्हारी राह में चुपचाप खड़े हैं आज भी, तुम मुड़कर देखो ये जरूरी तो नहीं। कुछ रिश्ते मुकम्मल होकर भी कहां अपने होते हैं, मेरा अधूरा रहना भी बेकार हो ये जरूरी तो नहीं। तुम मेरे नहीं हो ये सच अपनी जगह, तुम मेरे नहीं हो ये सच अपनी जगह, पर तुम्हें चाहना गलत हो ये जरूरी तो नहीं।

चलिए अब लेते हैं आपसे इजाजत, क्योंकि वक्त हो चुका है आपसे बाय कहने का। लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी फ्रॉम रेनबो।

12 बजते हैं, आइए अब सुनते हैं एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। भारत और फ्रांस ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों की कंपनियों में 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 11 सदस्य देश हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में कल दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान भी बंद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहर के निर्माण का आह्वान किया। दिल्ली सरकार आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को तेजी से संचालित करने के लिए राज्य आपदा मोचन बल का गठन करेगी। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने आज टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि से संबंधित सेवा गुणवत्ता मानक विनियमों को निरस्त करने वाले विनियम 2026 जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैराशूटिंग चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण पद सहित 4 पदक जीते। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 12:02 हुए हैं। दोस्तों आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो, और प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। मेरी सांसों में आज कोई खुशबू सी उतर आई है, जैसे किसी की मोहब्बत चुपके से करीब आई है। नजरें कुछ कहती हैं, दिल कुछ सुनाता है, एक अनजाना सा एहसास हर पल मुस्कुराता है। कभी हवाओं में उनका जिक्र महसूस होता है, कभी खामोशी में उनका सांस साथ महसूस होता है। मोहब्बत शायद इसी एहसास का नाम है, जहां बिना कहे भी दिल को किसी का पैगाम है।

मेरी सांसों की डोर बस दो ही ख्वाहिशों पर टिकी है, सांस चले तो तुम साथ रहो और हर सांस में तुम्हारा नाम हो। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत आशिकी फिल्म से, आवाज कुमार सानू और अनुराधा पौड़वाल की।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: वादा था साथ निभाने का, फिर क्यों रास्ते बदल गए। हम आज भी वही ठहरे हैं जहाँ तुम हमें छोड़ गए। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुषमा श्रेष्ठा की आवाज़ों में फिल्म हम किसी से कम नहीं का ये गीत।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंदे पर रात 9 बजे।
1: जीरो आर शो में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म आईना का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: बारह बजकर 27 मिनट और 10 सेकंड हुए हैं, आप सुन रहे हैं जीरो आर शो। और आइए अब सुनवाते हैं आपको सुर फिल्म का गीत, जिसे गाया है महालक्ष्मी ने।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: अलका याग्निक को आइए सुनते हैं फिल्म स्वदेश में।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आधार कार्ड है ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: आप सुन रहे हैं जीरो आर शो आकाशवाणी के FM रेनबो पर, और आइए अब आपको सुनवाते हैं नाम फिल्म का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सितारा फिल्म का गीत आइए अब सुनते हैं, आवाजें लता मंगेशकर और भूपेंद्र की।

और दोस्तों कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं सातवां आसमान फिल्म का ये गीत, आवाजें उदित नारायण और लता मंगेशकर की। और इसी के साथ जीरो आर्स प्रोग्राम समाप्त करने की मुझे यानी अर्चना विसारिया को अनुमति दीजिए।

एक बजने को है, आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत और फ्रांस ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 11 सदस्य देश हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में कल दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान भी बंद रहेंगे। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद मिलने वाली 60 दिनों की राहत अवधि खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। NTA ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार 13 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने आज टेलीविजन चैनलों में विज्ञापनों की अवधि से संबंधित सेवा गुणवत्ता मानक विनियमों को निरस्त करने वाले विनियम 2026 जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। भारत ने विश्व पैराशूटिंग चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 40 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई।

0: आकाशवाणी।
1: हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:03 और 12 सेकंड हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे प्रोग्राम सुहानी रात। इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

पुराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
4: चिकी चिकी

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान

ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

दो बजे हैं, आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो पर इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 11 सदस्य देश हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में कल दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान भी बंद रहेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार 23 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। श्रम और रोजगार तथा खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से मुंबई में आज और कल भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी। इसके तहत नियमित प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों को हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विज्ञान विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण पदक सहित 4 पदक जीते। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 40 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

2:03 हुए हैं दोस्तों, आइए अब सुनते हैं नॉन स्टॉप म्यूजिक प्रोग्राम भुलाए ना बने में। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया।

अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

तुम एक बेगैरत इंसान हो जिसे बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं आता। कुमार, ना तुम्हारा कोई कैरेक्टर है, ना ईमान, ना वफादारी,

अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

0: कहाँ जा रहे हो? महफिल की रौनक खत्म हो जाएगी तुम्हारे चले जाने से।
1: गरीब अमीरों की महफिल की रौनक नहीं, हमेशा तमाशा बना है।
0: ठहरो अनी, लौट आओ हमारे मेहमान बनकर, हम बुला रहे हैं, आओ ना। थैंक्स, हम आपसे कुछ मांगे तो इनकार तो नहीं करते?
1: जी नहीं।
0: फ्रेंड्स, आज की शाम और खुशगवार हो जाए इसलिए हमने अनिल साहब से एक वादा लिया है कि वो हम सबको एक गाना सुनाएंगे।
1: सर, मुझे तो एक ही गीत आता है और वो गम का गीत इस खुशी की महफिल में कैसे गा सकता हूँ?
2: वो खुशी क्या है अनिल जिसमें गम शामिल ना हो?
3: ना गम
2: सिंह।

मध्य रात्रि 3 बज चुके हैं। अब सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। भारत कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 11 सदस्य देश हिस्सा लेंगे। ब्राजील के विदेश मंत्री माओ रूवियरा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में कल दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान भी बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और रूस के उद्योग एवं व्यापार मंत्री एंटोन अलीखानोव ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड के मंडप का दौरा किया। विशाखापत्तनम में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के 41वें वार्षिक सम्मेलन में नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में पर्यटन की अहम भूमिका होगी। एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार 13 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने आज टेलीविजन चैनलों में विज्ञापनों की अवधि से संबंधित सेवा गुणवत्ता मानक विनियमों को निरस्त करने वाले विनियम 2026

जारी किए हैं। महाराष्ट्र में नांदेड़ भोकर मार्ग पर कल शाम सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 40 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। आधी रात के 3:04 हो चुके हैं और अब आप सुनेंगे मिडनाइट मेलोडीज द शो में नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक, जिसमें बिना रुके गानों का आप आनंद लेंगे एक के बाद एक। तो शुरुआत करते हैं लापता लेडीज मूवी के इस गाने के साथ अरिजीत सिंह की आवाज में।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं मिडनाइट मेलोडीज, द शो में नॉनस्टॉप गाने। और सुबह 4 बजे हम सुनेंगे मुख्य समाचार। अभी गाने।

सुबह के 4 बज चुके हैं। एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। भारत कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 11 सदस्य देश हिस्सा लेंगे। ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में कल दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान भी बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और रूस के उद्योग तथा व्यापार मंत्री एंटोन अली खानोव ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड के मंडप का दौरा किया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने आज टेलीविजन चैनलों में विज्ञापनों की अवधि से संबंधित सेवा गुणवत्ता मानक विनियमों को निरस्त करने वाले विनियम 2026 जारी किए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से मुंबई में आज और कल को भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। महाराष्ट्र में नांदेड़ भोकर मार्ग पर कल शाम सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली नगर निगम ने अनाधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। भारत ने विश्व पैराशूटिंग चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 40 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

सुबह के 4:03 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और नॉनस्टॉप गानों का आप मजा ले रहे हैं। अब शुरू होता है कार्यक्रम सारेगामा, इसमें भी आप बिना रुके गानों का मजा लेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।